लड़की। रेडियो प्रसवानी 1701 AM बहुत ही खूबसूरत मॉर्निंग ट्रैक्स के साथ इस वक्त आप हैं सताक्षी के साथ आपके अपने ब्रेकफास्ट शो हैपेंस में। देखिए जी, गाने मैं वो प्ले जरूर करूंगी जो आपको पसंद है, क्योंकि आपकी पसंद का हमें ख्याल है। और अगर आपको गाने नहीं पसंद आते हैं हैपेंस के, तो आप हमें बिल्कुल बता सकते हैं हमारी रेडियो प्रसवानी के फेसबुक पेज पर आके, है ना, हमसे शेयर कीजिए और बताइए कि आपको गाने नहीं अच्छे लग रहे हैं। देखिए, जो चीज ना पसंद हो ना, उसे बिल्कुल खुल के कह देना चाहिए कि बॉस मुझे ये नहीं पसंद है, मेरी मर्जी का ये नहीं है, या फिर मुझसे ये नहीं हो पाएगा। हाँ, क्योंकि अगर आप ना नहीं कहते हैं तो आप खुद के साथ नाइंसाफी करते हैं। बहुत जरूरी है इस वर्ड को सीखना। पता है क्या, हमें ना हमेशा यस सिखाया जाता है क्लास में, यस मैम, यस सर, यस टीचर, और फिर आगे जाके यस बॉस, है ना। लेकिन नो, इसका यूज जो है ये हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन असल लाइफ में हमें कब कहाँ कैसे करना है ये हम सीखते नहीं हैं। बहुत जरूरी है कि नो का यूज सीखा जाए, क्योंकि ना कहना एक खूबसूरत सी कला है, और अगर आप इस कला को सीख जाते हैं कब कहाँ कैसे इसे कहना है, तो फिर आप खुद को एक पॉजिटिव साइड, एक पॉजिटिव वे की ओर लेकर चले जाते हैं, आप खुद को बचा लेते हैं। कई सारी ऐसी चीजें हैं जिंदगी में जिनको लेकर हम कॉन्फिडेंट नहीं है, कई सारी ऐसी चीजें हैं जिंदगी में जिनको हम करना नहीं चाहते हैं, हमें नहीं पसंद है, कई सारी हमारी ऐसी चीजें हैं जो हम दूसरों को देना नहीं चाहते हैं, लेकिन ना कैसे कहें ये बड़ी मुश्किल है। इस कला को सीखिए और जरूर इसे अपनी जिंदगी में अपनाइए, क्योंकि जब तक आप ना कहना नहीं सीखेंगे, आप जिंदगी को जीना नहीं सीखेंगे। सताक्षी के साथ इट हैपेंस सिर्फ और सिर्फ रेडियो प्रसवानी 1701 AM पर। चलिए, आपको पसंद ना आए तो जरूर बताइएगा, लेकिन फिलहाल मैं आपके लिए प्ले करती हूँ ये अगला ट्रैक।

अच्छा एक बात बताइए मुझे, जब भी आपका फोन आप अपडेट करते हैं, क्यों करते हैं? इसलिए ताकि ऐप में कोई नया चेंज हुआ हो तो वो आपके फोन में अपडेट हो पाए, इसीलिए करते हैं ना, आपका फोन अप टू डेट रहे, सारी चीजें वेल मेंटेन्ड रहें, अच्छे से फोन वर्क करे, इसीलिए करते हैं ना। जिस तरह से अपने फोन की एप्स को अपडेट करते हैं उसी तरह से खुद को भी अपडेट करना बहुत जरूरी है। मैंने लोगों को अक्सर कहते सुना है कि अब हम सीख कर क्या करेंगे, जब आप सीखेंगे नहीं तो फिर आप खुद में चेंज कैसे लाएंगे, आप दुनिया में क्या कुछ हो रहा है इसे कैसे समझ पाएंगे, आप खुद को अपडेट कैसे कर पाएंगे। बहुत जरूरी है जितना ज्यादा आप सीख सकते हैं सीखने पे ध्यान दें, क्योंकि जब आप सीखेंगे, जब आप अपडेट रहेंगे तभी आप जिंदगी में सही तरह से आगे बढ़ पाएंगे और जीत पाएंगे। देखिए क्या है ना कि हम अपना कंपटीशन हमेशा दूसरों के साथ करते हैं, अपना कंपटीशन हमें खुद के साथ करना है, खुद को निखारना है, खुद को अपडेट करना है, खुद को बेहतर बनाना है, और इसके लिए सीखना बहुत जरूरी है। सीखते रहिए, खुद में सुधार लाते रहिए, सिर्फ और सिर्फ खुद के साथ कॉम्पीट करते रहिए, और जिंदगी में देखिए फिर कितने लोग आपको फॉलो करते हैं। सुनते रहिए सताक्षी के साथ रेडियो प्रसवानी 1701 AM पर आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वड्डे डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन, जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां, इस बारे जानो, डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट।

बहुत सारे ऐसे खूबसूरत गाने हैं जो भी आगे भी आपके साथ प्ले करूंगी और आगे भी आपको सुनवाऊंगी, बांटूंगी। लेकिन देखिए, बातें जो हमारी और आपकी होती हैं वो भी बहुत खास होती है, है ना? और इसलिए चलिए फिलहाल बातों के सफर को आगे बढ़ाया जाए। मैं ये कह रही थी कि कई बार हम सोचते हैं कि यार सामने वाला उदास है, अपसेट है, हम उसे कैसे इंस्टेंटली अच्छा फील करा सकते हैं? आप उसे बाहर लेकर जाएंगे, घुमाएंगे, या आप गिफ्ट लाने की सोचेंगे, उन सबमें बड़ा टाइम लगता है। लेकिन अगर हम सोचें कि हम इंस्टेंटली किसी को कैसे अच्छा फील करा सकते हैं, बेटर फील करा सकते हैं, उसका तरीका पता है क्या है? एक प्यारा सा टाइट सा हग, झप्पी, जिसे मुन्ना भाई की भाषा में कहते हैं। जी हाँ, अगर आप किसी को हग करते हैं ना, तो आप इंस्टेंटली उसे अच्छा फील कराते हैं। जो काम आप घंटों में करेंगे वो काम सेकंड्स में हो जाता है। ये एक ऐसी मेडिसिन है ना कि वो तुरंत मिनटों में नहीं सेकंड्स में एक इंसान को बहुत बेटर, बहुत हल्का, बहुत अच्छा फील करा सकती है। तो अगर अगली बार भी आपको किसी को अच्छा फील कराना हो तुरंत में, तो उसे प्यारा सा टाइट सा हग दीजिए और देखिए कि वो इंस्टेंटली कैसे अच्छा फील करता है। सुनते रहिए सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिजवानी 1701। हम कुछ ऐसे ही मेडिसिन आगे भी आपसे बांटती रहूंगी इट हैपेंस में। आइए आगे बढ़ते इस अगले ट्रैक के साथ।

अच्छा दोस्तों, एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है. ऐसा होता है ना कि जब हम बच्चे होते हैं, टीनेजर होते हैं, यंगस्टर होते हैं, तो हमारे आसपास बहुत सारी लोगों की, दोस्तों की, साथियों की भीड़ रहती है, ग्रुप्स होते हैं हमारे. लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है, हमारे आसपास की वो भीड़ जो है वो कम होने लगती है. बहुत ही गिने चुने लोग हमारे आसपास रहते हैं. हमारे फ्रेंड सर्कल में भी बहुत गिने चुने लोग रह जाते हैं. यू नो व्हाट, ऐसा नहीं होता है कि आसपास के लोगों में कोई कमी थी इसलिए हमने उन्हें अपने ग्रुप से हटा दिया या वो कम हो गए हमारी जिंदगी से? ऐसा नहीं है. वक्त बीतने के साथ साथ हम एक्चुअली सच्चे लोगों के साथ रहना चाहते हैं. हम ये समझ रखने शुरू कर देते हैं कि कौन हमारा अपना है, कौन मुश्किल वक्त में हमारे साथ रहने वाला है. तो सच्चे और अपने लोग जो होते हैं ना, उनकी समझ हमें आ जाती है और उनके साथ हम ज्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू करते हैं, उनके साथ हम जिंदगी बिताना चाहते हैं. शायद इसीलिए हमारे आसपास की जो जो नंबर्स हैं, जो संख्या है, वो घटती चली जाती है जैसे जैसे उम्र का फासला बढ़ता जाता है. सुनते रहिए सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्वानी पर इट हैपेंस. और इस बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे प्लीज बताइए हमारे रेडियो प्रस्वानी के फेसबुक पेज पर. चलिए इस ट्रैक के उस पार बहुत सारी बातें हैं जो और भी करेंगे आपसे.

रेडियो प्रस्तानी 1701 AM सताक्षी के साथ आप एंजॉय कर रहे हैं आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। काम पर निकलने का वक्त हो गया है ना, रोज काम काम काम, रोज का दिन वैसा ही रूटीन, और फिर भी ये भरोसा नहीं कि कल का दिन आज से बेहतर होगा, लेकिन एक उम्मीद है, उम्मीद है कि हमारा हर पल बीते पल से बेहतर होगा, और इसी उम्मीद पर दुनिया कायम है दोस्तों। तो आज भी जब घर से निकल रहे हैं तो अपने साथ उम्मीद को लेकर निकलना मत भूलिएगा, ऐसा ना हो आप उसे घर पर ही छोड़ दें, क्योंकि उम्मीद जो है ना ये हर पल आपके साथ रहे ये बहुत जरूरी है, क्योंकि पता नहीं आपको इस उम्मीद की जरूरत कब पड़ जाए, और अगर ये आपके साथ नहीं हुई ना तो आप टूट जाएंगे, लेकिन अगर ये साथ हुई तो मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, आप जिंदगी में बुरा सा बुरा वक्त भी पार कर जाएंगे। अपनी उम्मीद को अपने साथ जरूर रख लीजिए और तब अपनी गाड़ी को अपने घर से आगे बढ़ाइए। सुनते रहिए मेरे साथ इट हैपेंस, सिर्फ और सिर्फ रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर।

तो दोस्तों ये था आज का इट हैपेंस का सफर, बहुत ही प्यार बहुत ही शिद्दत के साथ मैंने आज आपके लिए बनाया था, आपके लिए चुना था, एंड आई होप कि आज के सफर को आपने एंजॉय किया होगा। कल बहुत सारी बातें हैं जिन्हें आपके साथ बांटूंगी, शेयर करूंगी, लेकिन आज के सफर से अब इजाजत भी लूंगी। चलिए कल मिलते हैं नई बातों, नए गीतों के साथ, नए दिन के साथ, और आज के सफर से अब इजाजत दीजिए। जब तक हमारी आपकी मुलाकात होती है तब तक यूं ही हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए। हैव अ ग्रेट डे।

ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जैमिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास

टली रोड शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज्ड बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premierTickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 0430228009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय Aussies Migration and Education एंड पावर्ड बाय Swadesh Foods। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

हां जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101.9 ते जी आरचे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो, कोक स्टूडियो भारत ने ना अपना नवा गीत कचौड़ी गली जा तो रिलीज किया ना, हर कोई इस गाने की गल कर रहा है। भोजपुरी लोक गीत का सब तो सुंदर मनिया जाने वाला यह गाना रेखा भारद्वाज ने गाया है। गाने का नवा वर्जन कचौड़ी गली हर किसी की जुबान से छाया होया है जो लोग संगीत ते आधारित है। इस बार शो ने भोजपुरी दी लह विच बनारस दियां गलियां दी धुन प्रस्तुत कीती है। एक सदी तो भी वध पुरानी कचौड़ी गली गाने नू रेखा भारद्वाज ते बिहार दे इंडी लोक गायक उपल उदित ने गाया ते निशांत नागर ने इसनू तैयार कीता। यह गाना ना एक अजिहे समय ते कहानी नू पुनर्जीवित करता है जो कदे होया करता सी। एक अजिहे गाने नू जो एक सदी तो वध समय दी परंपरा दसदा है। ते अज इस गाने दी पूरी कहानी मैं दसदी हैगी आ तुहानू कि किवें किस दौर दे विच लिखिया गया सी, की कुछ होया सी, इस शुरुआत किवें सी। इस दी शुरुआत इस लाइन नाल हुंदी है कि सेजिया पे लोटे काला रंग। बड़ा सोहना जिहा गीत हैगा, तुसीं जरूर सुणियो, पर मैं तुहानू इस दी कहानी मैं सुणा दिंदी आ। गीत तुसीं यूट्यूब ते जरूर सुणियो।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी।
2: डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
3: कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
4: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 04209331 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
3: अरे वाह, इनका पता बताना।
4: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 04209331. वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
5: Hi, this is Amitabh Bachchan.
6: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
8: Hi, this is Salman Khan.
9: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
10: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
11: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
12: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
13: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
14: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.

हां जी, ईद एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101.1 FM ते चार छे संदेश अलग दिनाल से बड़े हुए। देखो एक गाना ना कचौड़ी गली है जड़ा, एक गाना पूर्वी उत्तर प्रदेश ते बिहार के कुछ हिस्सों में फैले पूर्वांचल ते तो हजारा पुरुषों के पलायन का भी मतलब संबंध रखता है, जो 19वीं सदी दे विच ना एग्लो बर्मी युद्ध के दौरान शुरू होया सी। हजारा आम नागरिकां नू अंग्रेजां वल्लों ना जबरदस्ती रंगून या बर्मा विच सिपाही बना के भेजा गया सी। 1824 तो 1937 तक बर्मा ब्रिटिश शासन के अधीन सी। हालांकि गाने विच उड़ल जहजवा शब्द का इस्तेमाल किया गया है, पर इस पर जेड़े पुरुष सीगे नू अक्सर भीड़ भाड़ वाले स्टिम्पशियों विच भेजा जांदा सी जो कदे कलकत्ता तो रवाना हुंदे सीगे।

Hello friends, Queensland Fiji Football Association's prestigious Nil Tech QIDC 2026 hone ja raha hai from Wednesday 21st October to Sunday 25th October at the prestigious Olympic Football Club. पहली बार ब्रिस्बेन नसीनू होंगे QFFA फैमिली का हिस्सा, साथ ही देखने आ रहे हैं सुवा, लंबासा, नैंडी, लोटोका, बा, टावुआ, रेवा, नांड्रोगा एंड रा। खाने में होगी द फेमस बटर चिकन डक करी, पुलाव और माउथ वाटरिंग फिजी स्टाइल बारबेक्यू। अरे अरे, हम आइस ब्लॉक्स को कैसे भूल सकते हैं। तो आ जाओ मैदान में और अपनी फिजी कम्युनिटी के साथ गेम्स और खाने का लुत्फ उठाओ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें चेयरपर्सन लॉरेंस on 0407-764-272 ya secretary Ray Ali on 0413-868-240 ya phir president Jitendra Prasad on 0402-422-777.

हाँ जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिसोनी 1.1 FM ते जी आरचे संदेश अलग दिराल से बने हुए हूँ। देखो कुछ चौड़ी गली बारे में तो इन्ना कुछ दास्ता है का है, तुसी देखियो जरूर एक बारी गीत ते तुसी जेड़े घर दे विच बुजुर्ग होणगे ना शायद उन्हां नूं कुछ पता होवे या फिर गूगल करो तो थोनू पता लग जाना है कि यह गल्ला किनिया कुछ सच है क्या ने। हुण देखो इस दे नाल होर भी गल्ला हैगियां ने जुड़ियां होईयां, जिवें 1885 दे युद्ध दा जिक्र। 40,000 सैनिकां दे विचों ना 15,000 मलेरिया पेचिश ते घने जंगलां विच होई लड़ाई दे कारण शहीद हो गए सी। हालांकि युद्ध 1885 विच खत्म हो गया सी पर ब्रिटिश जिहड़ियां नीतियां सीगियां उन्हां दे कारण 1900 दे दहाके विच वी पलायन जारी रहा। युद्ध ने व्यापक आर्थिक अस्थिरता लिया दिती सी ते बर्मा विच बंदरगाह शहरां विच रोजगार दे अवसर उपलब्ध सी। इन्हां लोकां ने बंदरगाहां चौलां दीआं मिलां ते दिहाड़ी मजदूरां दे रूप विच काम कीता। बर्मा ब्रिटिश प्रणाली यानी कि काला पानी दे लई मशहूर सी इह, जिस दे तहत भारतीय कैदियां नूं अंडमान ते सैलूलर जेल विच कैद कीता जांदा सीगा।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT, यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

0: ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: क्या आपकी शादी होने वाली है तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270335 पर या फिर उनसे मिलिए Level 133 Balaclava Street Wollongabba में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270335। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270335 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
2: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
2: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक।

0: चलो चलो दीपावली आ गई है। शिव शक्ति कल्चरल एंड एजुकेशन सिटी ऑफ मॉडर्न डे एसोसिएशन इन कॉरपोरेशन पेश करते हैं दीपावली उत्सव 2026 फेस्टिवल ऑफ लाइफ। सैटरडे 24 अक्टूबर को स्टॉल्स ओपन होंगे फ्रॉम 3 PM और फॉर्मल प्रोग्राम शुरू होगा फ्रॉम 7 PM एट पाइन रिवर स्टेट हाई स्कूल ऑडिटोरियम ग्राहम्स फ्रंट असेंबली हॉल स्ट्रैट पाइन। ध्यान रहे एंट्री होगी वाया एश कोट। होंगे बहुत सारे स्टॉल्स जैसे हिना रंगोली कंपटीशन, वेजिटेरियन क्यूजीन, किड्स ड्रेस अप कॉम्पिटिशन, कल्चरल एंड बॉलीवुड परफॉर्मेंसेज और नव दुर्गा ड्रामेटिक डांस, रैफल्स एंड डांस द नाइट अवे के साथ लाइव म्यूजिक भी। टिकट प्राइजेस आर $20 पर हेड, $50 पर फैमिली जिसमें कपल्स के साथ 2 किड्स अंडर 16 इयर्स आर इंक्लूडेड और किड्स अंडर 12 यस होंगे फ्री। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नीलिमा ऑन 0405-409-156, आई रिपीट 0405-409-156 या आप ब्रिस्वानी की ऑफिशियल वेबसाइट www.briswani.com पर इवेंट सेक्शन में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। आइए मिलकर दिवाली का फेस्टिवल मनाएं। दीपावली उत्सव 2026 Saturday 24th October 2026 event proudly supported by the city of Moreton Bay।
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
2: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, CK बिरला, आर्टेमिस सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
1: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
2: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए। ओम्स ऑर्ग स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
3: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हैं। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द।
4: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
5: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
4: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di intricacies nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense which 12 saal to vadda rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws which bhi Bhardwaj and associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
5: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
4: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
6: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
7: सासों की माला पे सिमरू मैं।
0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस. फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर. सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है. ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं. हर टिकट परचेज इस ब्यूटिफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा. प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट. निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम. On sale now at premiertickets.co. Sponsorships, partnerships और ज्यादा जानकारी के लिए contact प्रेरणा on 0430228009. Proudly sponsored by Aussies Migration and Education and powered by Swadesh Foods. Come for the music, stay for the purpose, leave inspired.

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

0: फिल्मों के क्लाइमैक्स में हीरो जीतता है और लड़की ले जाता है, असल जिंदगी में विलेन। ए विलेन
1: यार, साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
5: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
6: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
5: अच्छा, वो क्या?
6: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
5: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
6: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन, au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: नमस्कार, दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी
7: से। टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
9: नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। अते लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिसबेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिसबेन।

Hello, friends. Queensland Fiji Football Association's prestigious NIL Tech QIDC 2026 hone ja raha hai from Wednesday 21st October to Sunday 25th October at the prestigious Olympic Football Club. पहली बार ब्रिस्बेन नसीनू होंगे QFFA फैमिली का हिस्सा, साथ ही देखने आ रहे हैं सुवा, लंबासा, नैंडी, लोटोका, बा, टावुआ, रेवा, नांड्रोगा एंड रा। खाने में होगी द फेमस बटर चिकन डक करी, पुलाव और माउथ वाटरिंग फिजी स्टाइल बारबेक्यू। अरे अरे, हम आइस ब्लॉक्स को कैसे भूल सकते हैं। तो आ जाओ मैदान में और अपनी फिजी कम्युनिटी के साथ गेम्स और खाने का लुत्फ उठाओ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें चेयरपर्सन लॉरेंस on 0407-764-272 या सेक्रेटरी रे अली on 0413-868-240 या फिर प्रेसिडेंट जितेंद्र प्रसाद on 0402-422-777।

0: नहीं, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।

0: ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: क्या आपकी शादी होने वाली है तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए Level 1 33 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
2: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
2: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वड डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तों भी अग्गे दे समें वास्ते इक नवी खेड
3: आप सब, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। हैप्पी मंडे आप सबको, स्वागत है आप सबका।

प्रोग्राम इवनिंग वाइब में मैं आ गई हूँ, आप भी आ जाइए, गाने भी मजेदार होंगे, गपशप होगी, आपकी फरमाइशें होंगी, जी हाँ बहुत कुछ होगा, और ये सारी की सारी चीजें लेकर इवनिंग वाइब आपके पास आ गया है. सो इवनिंग वाइब भी आ गया है, मैं भी आ गई हूँ. करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत, एंड आई होप आपका मंडे अच्छा जा रहा हो. जी हाँ, और आपको ऐसा फील ना जल्दी क्यों खत्म हो गया. मैं हमेशा कहती हूँ कि वीकेंड पे मस्ती कीजिए, मंडे को मेहनत कीजिए, और यही जिंदगी है. जी हाँ, इसी के साथ सबसे पहले शुरुआत होगी एक हेल्दी रिचुअल के साथ, एक ऐसा रिचुअल जो कि आपको हेल्दी रखता है फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरह से. सबसे पहले गहरी लंबी सांस. क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है. और इसी के साथ अच्छा फील करते करते एक बढ़िया से गाने के साथ शुरुआत होगी. गाने का नाम है आज की पार्टी, सुनते हैं इसको और फिर करते हैं और बहुत सारी बातें, क्योंकि बातें अभी शुरू हुई हैं मेरे दोस्त.

बेबी को बेस पसंद है और यहाँ पर बेस के बजाय जाते हैं हम मौसम की ओर। जी हाँ, क्योंकि मौसम बहुत कुछ कह रहा है, बहुत कुछ, और उसके बारे में जानना बेहद ही जरूरी है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे मैक्सिमम टेम्परेचर के साथ। तो 31 डिग्री सेल्सियस के करीब मैक्सिमम टेम्परेचर रहा, वहीं अगर अभी की बात की जाए तो 27.4 डिग्री सेल्सियस के करीब है। ऑन द अदर हैंड फील आपको हो रहा है 28.6 डिग्री सेल्सियस के करीब। जी हाँ, ये तो हुई दिन की बात। रात की बात करें तो 19 डिग्री सेल्सियस तक तापमान के रहने के चांसेस हैं, और वहीं नो चांसेस ऑफ बारिश, पूरी तरह से खिला खिला सूरज। मैंने पहले ही कहा था कि गर्माहट जो है वो अच्छे से आपको मिलने वाली है, और इसी के साथ ये गर्माहट और कितने दिन रहने वाली है जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि एयर क्वालिटी की बात करें तो वो भी एकदम फेयर है। चलिए, आज की बात हो गई, तो अब ट्यूजडे और वेडनेसडे की बात करते हैं। तो ट्यूजडे को कल 31 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर रहने के चांसेस है, बट अगेन 60% चांसेस बारिश होने के भी हैं। जी हाँ, बारिश होने के चांसेस 60%, विच इज 5-10 mm बारिश जो है वो हो सकती है। वहीं अगर बात की जाए वेडनेसडे की, यानी कि परसों की, तो 25 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा विद 50% चांसेस ऑफ बारिश। तो आपने देखा कि कल जो है वो मौसम 31 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, लेकिन उसके बाद गिरावट आएगी 6 डिग्री सेल्सियस की, 25 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जो है वो चला जाएगा वेडनेसडे को बिकॉज ऑफ द रेन। लेकिन ये बारिश सिर्फ कल या परसों ही आपको परेशान नहीं करने वाली है, बल्कि अब आप रेडी हो जाइए, क्योंकि मैं देख पा रही हूं पूरी तरह बारिश। ना फ्राइडे तक तो फिर भी बारिश के साथ साथ मुझे थोड़ा बहुत सूरज की किरणें भी नजर आ रही है, मतलब सूरज जो है वो लुपा छुपी खेलता हुआ, हाइड एंड सीक खेलता हुआ आपको फिर भी नजर आएगा। लेकिन सैटरडे से पूरी तरह बारिश, मतलब ये जो सैटरडे आने वाला है तब पूरी तरह बारिश जो है वो आने वाली है। सो ये पूरा का पूरा हफ्ता और इसके अगले हफ्ते आप रेडी रहिए बारिश के लिए। और मैं आपको बता दूं कि कल जब आप निकलने वाले हो अपने काम के लिए तो छाता ले जाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उसकी आपको जरूरत पड़ सकती है। जी हाँ, इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से थोड़ा फिर से डांस हो जाए।

0: ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿੱਟ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ QLD ਖੋਜੋ ਜਾਂ 132 ANT ਯਾਨੀ ਕਿ 132-268 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। Phone 3630-5438, 3630-5438 ya mobile 0415-952-660, 0415-952-660.
0: Vadere kifayati rihaish di shuruaat vadere karan di uplabdhta naal hundi hai। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270335 पर या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270335। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270335 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपरवर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
3: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे अनियार श्रीनिविया के साथ। दोस्तों इसके साथ अब सर आपकी फरमाइशों की बात कर ली जाए, क्योंकि ये वीकेंड का प्रोग्राम नहीं है, वीक डेज का प्रोग्राम है, इवनिंग वाइब की बात है। मतलब यहाँ पर जो वाइब है उसे बनाने में हाथ सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि आपका भी है। सो क्या कह रही हूँ मैं, वेल वही जो आप सोच रहे हैं। और अगर आप नहीं सोच पा रहे तो मैं आपको बता दूं, हमारे इस प्रोग्राम में आप अपने फेवरेट गाने फरमाइश कर सकते हैं, अपने फेवरेट गाने रेकमेंड कर सकते हैं, किसी को डेडिकेट कर उन्हें स्पेशल भी फील करवा सकते हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, अपना फोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए, नंबर है +9182888-71701। आई रिपीट, +9182888-71701। तो बस फिर जल्दी से फोन उठा लीजिए, नंबर डायल कर दीजिए, भेज दीजिए हमें अपनी फरमाइश वाया कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप। मुझे है इंतजार और ये रहा हमारी तरफ से एक और बहुत ही खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए।

0: Drop the bait.
1: दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले का कंगना।

जी दोस्तों, इसी के साथ एक बड़ी ही दिलचस्प चीज इंटरनेट पर वायरल हो रही है और इंटरनेट पर वायरल होने के पीछे की वजह इसकी ये है कि ये दिवाली के अराउंड का हुआ इंसिडेंट है। जी हाँ, ऑफकोर्स आपको समझ आ ही गया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। सो आपको पता ही है, इंडिया में दिवाली जो है वो बहुत बड़ा फंक्शन है। इनफैक्ट जहां भी भारतीय लोग रहते हैं उनके लिए दिवाली बहुत ही बड़ा फंक्शन है। अब तो बहुत सारी डिफरेंट जो कंट्रीज है वेस्ट में, उनमें भी इसे बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है और इसके लिए छुट्टी भी इनफैक्ट किसी किसी कंट्री में दी जाती है। सो यहां पर दिवाली पे गिफ्ट देना जो है वो जो कंपनीज है, इंडियन कंपनीज, उनके लिए एक बहुत ही नॉर्मल सा रिवाज है। मतलब ये हमेशा से होता हुआ आया है। लेकिन यही रिवाज जब एक कंपनी ने निभाया और बहुत ही गजब तरीके से निभाया तो वो हिस्ट्री बन गए। जी हाँ, आप लोग बोलोगे हैं ऐसा क्या हुआ। सो एक डायमंड बिजनेसमैन जिन्होंने रिवॉर्ड किया अपने एम्प्लॉयज को 1260 यानी कि 1260 कार्स और 400 घरों के साथ और साथ में ज्वेलरी भी एज अ गिफ्ट। जी हाँ, मतलब आपने सूटकेसेस और बहुत सारी चीजों को मिलते हुए देखा होगा जो इंडियन लोग हैं, जो इंडियन कंपनीज में काम करते हैं उनको दिवाली पे गिफ्ट्स मिलते हैं एंड दैट इज अ वेरी नॉर्मल थिंग। बट इस वाले बिजनेसमैन ने बता दिया कि अगर गिफ्ट देना ही चाहते हो, अगर तुम अपने लोगों को लुभाना ही चाहते हो, अपने एम्प्लॉयज को लुभाना ही चाहते हो ताकि वो तुम्हारे लिए जम के काम करे, अच्छे और सच्चे दिल से काम करे, तो मेरी तरह गिफ्ट दो। जी हाँ, मतलब 1260 गाड़ियां, 1260 कार्स उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को गिफ्ट की, 400 घर भी उन्होंने अपने जो एम्प्लॉयज थे, जो अच्छे एम्प्लॉयज थे, जो लॉयल एम्प्लॉयज थे, जो बहुत ही अच्छे काम करते थे, उनको गिफ्ट किए और साथ में ज्वेलरी भी, क्योंकि वो डायमंड बिजनेसमैन है तो उनके लिए ज्वेलरी लाना कोई मुश्किल बात नहीं थी, ज्वेलरी भी गिफ्ट किए। लिटरली ही स्पेंट अराउंड 51 करोड़ रुपीज ऑन दीज गिफ्ट। जी हाँ, दिवाली पे बोनस की जगह जो गिफ्ट मिले वो ऐसे मिले कि लोग भी मतलब खुश हो जाए। आपको लगता है कि ऐसी कंपनी को छोड़ के कोई कहीं जाएगा? और आपको लगता है कि ऐसे बॉसेस हमारे अराउंड भी हैं, हमारे आजू बाजू भी हैं? कहाँ हैं ये बॉसेस, कहाँ हैं? जी हाँ, मतलब जबरदस्त है ये, तो उससे भी ज्यादा जबरदस्त हो गया जो चाइना का एक एम्प्लॉय है जिसको एनुअल जो डिनर होता है, जो एनुअल पार्टी होती है ऑफिस की, उसमें 365 डेज पेड लीव मिली थी। जी हाँ, मतलब वो तो सिर्फ एक ही बंदे को मिली थी और कुछ और लोगों को छोटे छोटे गिफ्ट्स मिले होंगे, लेकिन यहाँ पर 1260 लोगों को कार ही मिल गई। जी हाँ, और 400 लोगों को घर ही मिल गए और बाकी लोगों को ज्वेलरी ही मिल गई। मतलब क्या चाहिए, और बस एक ही चीज चाहिए, ऐसा बॉस। जी हाँ, लेकिन मेरे बॉस तो अच्छे हैं सो मैं नहीं कह रही हूँ, पर आप देख लीजिए भाई। जी हाँ, दिवाली के गिफ्ट हो तो ऐसे, मतलब बंदा जो है वो जबरदस्त है। और मैं आपको नाम भी बता देती हूँ, क्योंकि इतना कुछ बता दिया है तो नाम भी बता देते बंदे का। ये है सब्जी ढोलकिया, जो कि फाउंडर है सूरत बेस्ड डायमंड कंपनी के। उन्होंने ये किया था। वेल, बात अभी नई नहीं है, पुरानी है, बट द थिंग इज कि क्योंकि दिवाली आने वाली है तो ये फिर से स्टोरी जो है वो वायरल हो रही है एंड पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट। एवरीवन इज जेलस कि भाई हमारे बॉसेस क्यों नहीं ऐसे। चलिए, इसी के साथ यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन जबरदस्त है।

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
2: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
2: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
3: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
4: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
3: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
4: अरे ओमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
3: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
4: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
3: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
4: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
5: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वड डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां, इस बारे जानो, डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
6: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों इसी के साथ बॉलीवुड के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर, क्योंकि धुरंधर द रिवेंज का म्यूजिक जो कि शाश्वत सचदेव ने बनाया था वो ग्रामी के लिए नॉमिनेशन की रेस में है। जी हाँ, आपने सही सुना है, ग्रामी रन में आ गया है वो। जी हाँ, ग्रामी रेस में आ गया है। सो शाश्वत सचदेव म्यूजिक फॉर धुरंधर द रिवेंज एंटर्स द ग्रामी रेस। आई एम टेलिंग यू, ये पूरी की पूरी एल्बम जो कि शाश्वत सचदेव ने धुरंधर द रिवेंज के लिए बनाई है उसके बहुत सारे गाने इस रेस में है। एंड यू कैन ओनली इमेजिन की व्हाई इज इट हैपनिंग, ये क्यों हो रहा है? बिकॉज द म्यूजिक वॉज बैंग ऑन, द मूवी वॉज स्पॉट ऑन। लाइक क्या था इस मूवी के बारे में जो कि आज भी लोग ऐसा सोचते हैं कि मूवी होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए। मतलब आदित्य धार ही मूवीज बनाए सारी, बाकी करण जौहर वगैरह सब रहने दे, बिकॉज अब उनसे हो नहीं पा रहा है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, आई एम ऑल्सो अ करण जौहर फैन। मतलब उनकी कुछ मूवीज जो हैं वो कल्ट फेवरेट हैं और वो हमेशा कल्ट फेवरेट रहेंगी, बट दैट डजंट मीन कि आजकल का जो नैरेटिव है उसको वो अच्छे से सर्व कर पा रहे हैं। सो या धुरंधर द रिवेंज और धुरंधर सीरीज जो है वो अपने आप में गजब की मूवी है। और आपको तो पता ही उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन छप्पड़ फाड़ हुई थी, लेकिन उसका म्यूजिक भी जो है वो बहुत ही गजब का, आज भी वो ट्रेंड कर रहा है म्यूजिक स्ट्रीमिंग साइट्स पे। तो आप इमेजिन कर ही सकते हो कि क्यों ऐसा हुआ। सो या ग्रैमी रेस में आ गया है उनका ये 14 सॉन्ग एल्बम फॉर द धुरंधर द रिवेंज। एंड 2027 में जब ग्रैमी अवार्ड्स होंगे तो उसमें क्या होगा, कैसे होगा, ये हमें तब पता चलेगा। बट या फॉर नाउ इट इज अ ग्रेट न्यूज फॉर धुरंधर मेकर्स, बिकॉज इधर तो उन्होंने सब कुछ अचीव कर ही लिया था, लेकिन अब वो हॉलीवुड में भी एंड अमेरिका में भी चीजों को कॉन्कर करने की कोशिश कर रहा है, विच इज अ ग्रेट ग्रेट थिंग। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, बिकॉज आई थिंक मुझे लगता है कि सच में शाश्वत सचदेव डिजर्व्स दैट, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ यू नो ऑल द रियल सॉन्ग्स, लेकिन जो मतलब जो नए वाले गाने थे उनके अलावा जो उन्होंने पुराने गानों का भी रीमिक्स किया है वो इतना जबरदस्त किया है कि वैसे ही रीमिक्स होना चाहिए, ये सब कह रहे हैं। जी हाँ, तो आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं धुरंधर द रिवेंज का एक बड़ा ही जबरदस्त सा गाना, बिकॉज ऑफकोर्स हमने धुरंधर द रिवेंज की बात की है और उसका गाना हम प्ले नहीं करें, और ये उसका टाइटल ट्रैक है, सो यू कैन ओनली इमेजिन कि ये कितना जबरदस्त था।

जी हाँ दोस्तों, अब मैं एक ट्यूनिंग गाने वाली हूँ और उसके बाद आपको गेस करना है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। जी आप लोग बोलोगे कि निविया शर्मा ट्यूनिंग वाला पार्ट सही था लेकिन गाने वाली हूँ वो वाला पार्ट बिल्कुल सही नहीं है। सो इसके बारे में एक बार फिर से सोच लीजिए क्योंकि हमारे कानों पर थोड़ा तो रहम कीजिए। अरे डोंट वरी, इतनी टेंशन कानू लेने हो तुसे? जी हाँ, मतलब आप लोग इतनी टेंशन लेते क्यों हो? ऐसे नहीं करने वाली हूँ मैं, मतलब ज्यादा गाना नहीं गाने वाली, सिर्फ ट्यूनिंग गाने वाली, और वो भी इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ आप गेस करो कि मैं किसके बारे में बात करने वाली। जी हाँ, टन टन टन टन टन टन टन, आप लोग बोलोगे कि निविया शर्मा इससे हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो तुम बता ही दो तुम किस बारे में बात कर रही हो। चलिए ठीक है, यू नो व्हाट, आई ट्राई टू मेक इट मिस्टीरियस बट यू गाइज आर नॉट रिस्पॉन्डिंग इट, सो या आई हैव टू से। सो बात हो रही है हैरी पॉटर की थीम की जो कि जॉन विलियम्स ने बनाई थी। टन टन टन टन, मतलब ये वाली ट्यूनिंग आती है ना तो हमें पता चल जाता है कि हैरी पॉटर की बात हो रही है। नाउ हैरी पॉटर इज अ सीरीज, इट्स अ फिल्म सीरीज विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड ऑल द पॉटर हेड्स हार्ट। यू नो जो हैरी पॉटर के फैन है उनको पॉटर हेड्स कहा जाता है क्योंकि इसमें इतनी सारी थियोरीज हैं, इतनी सारी मिस्ट्रीज हैं, इतनी सारी चीजें हैं, डिटेल्स हैं जो कि सिर्फ पॉटर हेड ही अच्छे से समझ सकता है। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों ने क्या अपनी जिंदगी में एक भी बार हैरी पॉटर सीरीज देखी है? मतलब वो सारी की सारी मूवीज, वो आठ की आठ मूवीज क्या आपने देखी है? बताइएगा जरूर मुझे। अब मैं क्यों इसके बारे में बात कर रही हूँ? वेल ऑफकोर्स इसलिए क्योंकि हैरी पॉटर नाम की सीरीज, नॉट द फिल्म जो कि आ चुकी थी बहुत पहले ही, बट अ न्यू सीरीज जिसको HBO बना रहा है और वॉर्नर ब्रदर्स बना रहे हैं, वो आने वाली है जल्द ही। और जल्द ही से मेरा मतलब है दिसंबर में डेब्यू कर रही है वो। जी हाँ, मतलब पहले आप उसे फिल्म के वर्जन में देख चुके हो, अब आप उसे शो के वर्जन में देखोगे, मतलब और ड्रामा सीरीज के वर्जन में आप उसे देखोगे। इसमें नई कास्ट होगी, इसमें सब कुछ नया होगा और इसकी वो थीम जो कि मैं आपको गेस करने को कह रही थी वो भी नहीं होगी। मतलब मुझे नहीं समझ आया कि क्या है वो, मतलब आई डोंट थिंक कि उस थीम के बिना हैरी पॉटर है। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ये है कि हैरी पॉटर विदाउट हेडविग्स थीम इज लाइक हॉगवर्ड्स विदाउट मैजिक। जॉन विलियम्स ने उस म्यूजिक को बनाया था लेकिन हैंस ज़िमर को अब इसका नया काम दिया है। नाउ इट्स हैंस ज़िमर, सो ऑफकोर्स हमारी उम्मीदें जो है वो अगेन अच्छी ही है, मतलब हमारी उम्मीद है कि कोई अच्छा म्यूजिक बनेगा, बट कितना भी अच्छा बना दिया जाए वो पुरानी वाली थीम, आई डोंट नो इफ आई कैन एवर अनडू इट, राइट? मतलब आई डोंट थिंक दैट। सो आप मुझे बताइए कि आप हैरी पॉटर सीरीज के फैन हैं, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म सीरीज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द न्यू सीरीज विच इज कमिंग, क्योंकि वो तो अभी आएगी। और क्या आप लोग भी उस रिचुअल को निभाते हो? बिकॉज यू नो इट्स माई रिचुअल दैट आई वॉच हैरी पॉटर एवरीवेयर। पूरी की पूरी फिल्म जो है वो 6-7-8 मूवीज जो है वो मैं पूरी की पूरी मूवीज देखती हूँ हर एक साल, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड यू नो व्हाट द फन फैक्ट इज कि J.K. रॉलिंग ने जैसे उसको लिखा, डायरेक्टर्स ने जैसे उसे बनाया, हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है जब भी आप, मतलब आपको लगता है कि ओ ये हमने पहले क्यों नहीं देखा। एंड यू नो व्हाट, आई हैव बीन वॉचिंग हैरी पॉटर फॉर मोर देन 20 years नाउ एंड स्टिल देयर आर थिंग्स विच अमेजेस मी, लाइक लिटरली मुझे ऐसा लगता है कि ओ ये ऐसा था, अरे ये इसलिए हुआ था। सो या इफ अगर आपने नहीं देखी है कभी भी हैरी पॉटर सीरीज, फिल्म सीरीज, वॉच इट बिकॉज दिस इज द परफेक्ट मूवी एवर। जी हाँ, एंड इसी के साथ इंतजार कीजिए क्योंकि हैरी पॉटर ड्रामा सीरीज भी जल्दी आने वाली है दिसंबर में, HBO Max पे आप इसे देख पाओगे। एंड या वी आर एक्साइटेड बट नॉट दैट एक्साइटेड, आई डोंट नो व्हाई, बट या कुछ नॉस्टैल्जिक फीलिंग है पुरानी हैरी पॉटर के साथ। सो यार, इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन जबरदस्त होने वाला है, और उसका नाम है मादा लाडला बिगड़ गया।

0: चलो चलो दीपावली आ गई है। शिव शक्ति कल्चरल एंड एजुकेशन सिटी ऑफ मॉडर्न डे एसोसिएशन इनकॉर्पोरेशन पेश करते हैं दीपावली उत्सव 2026 फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। सैटरडे 24 अक्टूबर को स्टॉल्स ओपन होंगे फ्रॉम 3 PM और फॉर्मल प्रोग्राम शुरू होगा फ्रॉम 7 PM एट पाइन रिवर स्टेट हाई स्कूल ऑडिटोरियम ग्राहम्स फ्रंट असेंबली हॉल स्ट्रैट पाइन। ध्यान रहे एंट्री होगी वाया एश कोट। होंगे बहुत सारे स्टॉल्स जैसे हिना रंगोली कंपटीशन, वेजिटेरियन क्यूजीन, किड्स ड्रेस अप कॉम्पिटिशन, कल्चरल एंड बॉलीवुड परफॉर्मेंसेज और नव दुर्गा ड्रामेटिक डांस, राफल्स एंड डांस द नाइट अवे के साथ लाइव म्यूजिक भी। टिकट प्राइसेस आर $20 पर हेड, $50 पर फैमिली जिसमें कपल्स के साथ 2 किड्स अंडर 16 इयर्स आर इंक्लूडेड और किड्स अंडर 12 यस होंगे फ्री। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नीलिमा ऑन 0405-409-156 आई रिपीट 0405-409-156 या आप ब्रिस्वानी की ऑफिशियल वेबसाइट www.briswani.com पर इवेंट सेक्शन में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। आइए मिलकर दिवाली का फेस्टिवल मनाएं। दीपावली उत्सव 2026 Saturday 24th October 2026 event proudly supported by the city of Moreton Bay।
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
2: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, CK बिरला, आर्टेमिस सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
1: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
2: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
3: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
4: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
5: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
4: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
5: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
4: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
6: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
7: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों, आप जो मैं बात करने वाली हूँ वो स्पेशली स्पेसिफिकली एंड स्पेशली हमारी फीमेल लिसनर्स के लिए है, और खासकर फीमेल लिसनर्स के लिए इसलिए बिकॉज वो उन्हीं के बारे में है। जी हाँ, फीमेल बॉडी के बारे में है। और अगर मेरे मेल लिसनर्स भी इसे ध्यान से सुनना चाहते हैं जो मेडिकल फील्ड में है, तो या डेफिनेटली आपको सुनना चाहिए। नाउ व्हाई एम आई टॉकिंग लाइक दिस, बिकॉज वी आर गोना टॉक अबाउट अ ऑर्गन जो कि साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने अभी उन्हें मिला है, डॉक्टर्स को मिला है, साइंटिस्ट को मिला है, जो कि उससे पहले साइंटिस्ट को पता ही नहीं था उसके बारे में। जी हाँ, सो बेसिकली मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि साइंटिस्ट ने फीमेल बॉडी में एक नया ऑर्गन ढूंढ लिया है, लेकिन वो एग्जैक्टली नया है या नहीं, दैट इज द थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट। जी हाँ, सो सबसे पहले मैं आपको ये जिस ऑर्गन के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो साइंस है वो हमेशा मेल बॉडी को डिफॉल्ट बॉडी लेती है, और जो फीमेल बॉडी है उसको सेकंड बॉडी कहा जाता है। मतलब जो जितनी भी रिसर्च होती है मेनली जब भी मेडिकल फील्ड में, तो वो जो मेल बॉडी है उसको कंसिडरेशन में लेकर की जाती है। ओनली 4% या जस्ट 4% ऑफ रिसर्च जो है वो होती है फीमेल बॉडी पर, सिर्फ और सिर्फ 4% रिसर्च फीमेल बॉडी, जो कि अगेन ऑलमोस्ट हाफ अ पॉपुलेशन है। मतलब अगर आधे मेल हैं इस दुनिया में तो आधी फीमेल्स भी हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 4% रिसर्च ही होती है फीमेल बॉडी पे। नाउ जो ऑर्गन है वो कैसे आया जी हाँ नजरों के सामने, उसके पीछे की कहानी ऐसी है कि एक साइंटिस्ट है बहुत ही जबरदस्त, वो एक दिन ओवरीज को स्टडी कर रही थी, और वो ओवरीज को स्टडी कर रही थी एक माइस में। जी हाँ, वो रिसर्च करते करते देखती हैं कि हाँ जो माइस है उसकी ओवरीज के पास एक हॉर्सशू स्ट्रक्चर जो है वो बना हुआ है, लेकिन साइंटिस्ट के पास उसका कोई जवाब नहीं था, उन्हें पता नहीं था कि ये एग्जैक्टली क्या है। फिर उन्होंने सोचा कि अगर ये माइस की ओवरीज के पास है तो क्या ये ह्यूमन फीमेल बॉडी में भी होता है। तो फिर उन्होंने टेक्स्ट बुक्स को खंगाला तो उन्हें ऐसा कुछ दिखा ही नहीं। अब उन्हें नहीं दिखा तो उन्होंने पुरानी टेक्स्ट बुक्स को निकाला, यानी कि ऑलमोस्ट 100 साल पहले की या फिर उसके अराउंड की। तो वो देखती हैं कि हाँ फीमेल बॉडी, ह्यूमन फीमेल बॉडी में भी ऐसा एक ऑर्गन होता है, उसको रेटाई ओवरी या रेटी ओवरी के नाम से जो है वो जाना जाता है। अब आप लोग बोलोगे कि ओह तो मतलब पुरानी टेक्स्ट बुक्स में था तो नई वाली टेक्स्ट बुक्स में क्यों नहीं था। यू नो दैट इज द फनीएस्ट पार्ट, दैट इज द रीजन वी हैव टू टॉक अबाउट, बिकॉज अपेरेंटली सिर्फ और सिर्फ 4% रिसर्च ही फीमेल बॉडी पे होती है, क्योंकि अपेरेंटली मेल बॉडी जो है वो डिफॉल्ट बॉडी है फॉर साइंस रिसर्च। नाउ पुरानी बुक्स में था, नई बुक्स में नहीं था, मतलब लोगों ने और साइंटिस्ट ने इसे भुला ही दिया। उनको लगा कि ये बहुत ही यूजलेस ऑर्गन है, तो मतलब हमें इसकी जरूरत नहीं है। नाउ यू नो फॉर द कॉन्टेक्स्ट, अपेंडिक्स को भी माना जाता था कि बहुत ही यूजलेस ऑर्गन है। बहुत वक्त तक ऐसा ही कहा जाता रहा कि अपेंडिक्स जो है हमारी बॉडी में वो भी बहुत ज्यादा यूजलेस ऑर्गन है और उसका कोई काम नहीं है। लेकिन अब जाके साइंटिस्ट ये बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, ये इतना कोई यूजलेस ऑर्गन है नहीं, इसका भी काम है और ये काफी काम आता है, बहुत काम करता है हमारी बॉडी के लिए। नाउ वी आर नॉट गोना गो फॉर अपेंडिक्स का क्या काम है, वी आर गोना टॉक अबाउट रेटाई ओवरी थोड़ा और डिटेल में। अब जैसे यहां पर ये बहुत ही बड़ी बात थी, ऑफकोर्स किसी फीमेल को पता चलेगा कि यू नो वॉट, देर इज सो मेनी थिंग्स अबाउट फीमेल यू नो रिप्रोडक्टिव हेल्थ और यू नो जो सारा ये जो बर्थ का सिस्टम होता है पूरा का पूरा, ये इतना कुछ बन गया, IVF बन गया, एग फ्रीजिंग हो गया, मतलब कितना कुछ हो गया, लेकिन यहां पर एक बहुत एक ऐसा ऑर्गन है जो कि हमारी ओवरीज के पास है, लेकिन उसको कंसिडरेशन में लिया ही नहीं गया कि क्या वो क्या करता है इस सारे प्रोसेस में, जब IVF होता है, एग फ्रीज होता है या बच्चा पैदा होता है, इस दौरान रेटाई ओवरी क्या करती है। मतलब एक ऑर्गन जिसको भुला दिया गया और उसका कोई काम ही नहीं है ये सोचा गया, फिर उसके बाद क्या हुआ। वेल स्टोरी बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है तो मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले बात जरा लंबी हो जाएगी, तो यहाँ पर एक गाना आपको मैं सुनाने वाली हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे।
8: What you're about to experience.

इसी के साथ यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं एक बड़ी दिलचस्प चीज के बारे में, एक ऐसी ऑर्गन जिसको अपेरेंटली लोगों ने भुला दिया था। जी हाँ, और बहुत सारे लोगों को, डॉक्टर्स को इसके बारे में पता ही नहीं था। जी हाँ, उसके पीछे रीजन ये है कि उसको कन्वीनियंटली डिलीट कर दिया गया फ्रॉम आर टेक्स्ट बुक बिकॉज उनको लगता था कि इसका कोई काम नहीं है, जस्ट लाइक अपेंडिक्स। नाउ यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ऑर्गन की जो कि फीमेल बॉडी में होता है, हमारी ओवरीज के पास होता है। और उसका क्या काम है, उसका काम है भी या नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट काम है भी या नहीं, ये सारी की सारी चीजों के बारे में डॉक्टर्स को काफी टाइम तक पता ही नहीं था। जी हाँ, तो ये शुरुआत तब होती है जब, जैसे मैंने आपको बताया कि जेनिफर मिके जो कि एक बायोलॉजिस्ट हैं, एक साइंटिस्ट हैं, वो ओवरीज को स्टडी कर रही थी इन अ माइस एंड उसमें उनको एक हॉर्सशू स्ट्रक्चर दिखता है। और जब वो उसे देखती है उन्हें लगता है कि ओ ये क्या है। फिर उसके बाद वो देखती हैं और सोचती हैं कि अगर ये माइस की बॉडी में है तो क्या ये ह्यूमन फीमेल बॉडी में भी होता है। तो फिर जब उन्होंने देखा कि टेक्स्ट बुक्स में तो है नहीं, फिर उन्होंने पुरानी टेक्स्ट बुक्स को खंगोला और वहां पर उन्हें वो दिखता है और उसे रिटाई ओवरी कहा जाता है। जी, इसके बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज भी मैंने आपको बताई कि कैसे हमारी साइंस में जो डिफॉल्ट बॉडी ली जाती है वो बंदों की बॉडी को लिया जाता है, फीमेल बॉडी को नहीं लिया जाता। इट्स अ सेकंड बॉडी फॉर देम। जो यहाँ सिर्फ 4% रिसर्च ही उस पर हो पाती है। लेकिन जब ये सारी की सारी चीजें हुई और फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि ओके ठीक है, सो देयर इज अ ऑर्गन जो कि फीमेल बॉडी में होता है, उसका रिटाई ओवरी नाम है जो कि पहले की टेक्स्ट बुक्स में लिखा हुआ है। नाउ इट्स कुछ लोग इसे रिटाई ओवरी, रेटी ओवरी कहते हैं, और ऑफकोर्स इट डजंट मैटर क्योंकि बहुत वक्त से इसके बारे में बात नहीं की गई थी तो वो मैटर करता ही नहीं था। फिर उसके बाद साइंटिस्ट जो कि जेनिफर मैके हैं, उन्होंने ही आगे इसके बारे में और रिसर्च करने की कोशिश की और फिर उन्हें पता चला कि नहीं नहीं नहीं, रिटाई ओवरी जो है वो एक यूजलेस ऑर्गन नहीं है, वो लिटरली काफी चीजें एक्टिव हैं उसमें। मतलब उसमें ब्लड वेसल्स हैं, उसमें नर्व्स हैं, उसमें रिसेप्टर्स हैं, उसमें एस्ट्रोजन और क्या क्या नहीं है। अब ऐसे में एक ऐसा ऑर्गन जिसमें ये सब कुछ हो रहा है उसको कन्वीनियंटली डिलीट कर दिया गया हमारी टेक्स्ट बुक से, लाइक फॉर व्हाट? बिकॉज उन्हें लगा कि ये काम नहीं करता है। जी हाँ, मतलब काम नहीं करता है तो आप डिलीट कर दो। शुक्र है उन्होंने सिर्फ टेक्स्ट बुक से डिलीट किया, फीमेल बॉडी से डिलीट नहीं किया। और इसके बारे में और भी रिसर्च अब आगे हो रही है बिकॉज पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, साइंटिस्ट आर टॉकिंग अबाउट इट। और उसके अलावा भी अब जो कुछ जो PhD स्टूडेंट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो इसके बारे में रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके बारे में खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जितना भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जो प्रोसेस होता है, फिर चाहे वो बच्चा पैदा करने का प्रोसेस क्यों ना हो, वो IVF हो या एग्स को फ्रीज करने का हो या फिर नॉर्मल डिलीवरीज के दौरान, नॉर्मल प्रेगनेंसी के दौरान, ये क्या काम करती है रेटी ओवरी, इसके बारे में जानने की कोशिश अब और ज्यादा अच्छे से हो रही है। बट यू नो व्हाट, आई फील बैड कि लिटरली बिकॉज आई एम अ फीमेल एंड देयर आर मेनी फीमेल इन दिस वर्ल्ड। मतलब ऑफकोर्स आधी जो आबादी है वो ऑलमोस्ट औरतों की है, लेकिन औरतों की बॉडी में एक ऑर्गन है जिसके बारे में बात ही नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि इसके बारे में बात करनी है। मतलब यहां पे आपको पता चलता है कि सोसाइटी औरतों को कितने हल्के में लेती है। जी, एंड इट्स हाई टाइम कि ये चीज ना हो। हमारी बॉडी में अगर कोई भी ऐसा ऑर्गन है, पार्ट है, तो उसके बारे में रिसर्च होनी चाहिए। एंड या फीमेल बॉडी को भी सेकेंड बॉडी की तरह नहीं माना जाना चाहिए। मेल बॉडी को अगर डिफॉल्ट बॉडी माना जाता है तो फीमेल बॉडी को भी डिफॉल्ट बॉडी में इन अ डिफरेंट कैटेगरी माना जाना चाहिए। या इट्स हाई टाइम। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से जो कि बहुत ही खूबसूरत है और अगेन आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। On sale now at premiertickets.co. Sponsorships, partnerships और ज्यादा जानकारी के लिए contact Prerna on 0430228009. Proudly sponsored by Aussies Migration and Education and powered by Swadesh Foods. Come for the music, stay for the purpose, leave inspired.
1: Queensland विच हर साल जंगला विच आग लगती है। ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ, ताजे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो, बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार, ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
2: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
3: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
2: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
3: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स, कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM. शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ. दोस्तों, इसी के साथ अब सीधा चलते हैं खबरों की दुनिया की तरफ. जी हाँ, खबरों की दुनिया की तरफ जाने का वक्त हो गया है. दुनिया में क्या चल रहा है ये आपको बताने का वक्त हो गया है. सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारत से, क्योंकि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कह दिया और ये उस बारे में ही है जो कि प्रदर्शन से रिलेटेड बात है. मतलब प्रदर्शन के लिए, जी हाँ, इलेक्शन कमीशन चीफ के इस्तीफे के प्रदर्शन के लिए लोग जुटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें पुलिस वालों ने जुटने से पहले ही डाल दिया जेल में. और उसकी वजह से क्या क्या यहां पर कहा जा रहा है. नाउ, जो स्टूडेंट्स नहीं है, वो इस बार ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं है बल्कि ये कोई और प्रोटेस्ट है, लेकिन यहाँ पर जो सीजेपी पार्टी है वो ये कह रही थी कि हम तो यहाँ पर शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने वाले थे. भाई, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था या नहीं था, और वो सच में करने वाले थे या नहीं करने वाले थे. लोग ये भी कह रहे हैं कि हर महीने ही धरने पे बैठ जाते हैं, हर महीने ही लोग बैठ जाते हैं. नाउ देयर आर मेनी पीपल जो ये भी कह रहे हैं कि जहां पर तुम बैठते हो वहां पर हमें बिजनेस करना होता है. देयर आर सो मेनी बिजनेसेस जो कि छोटे बिजनेस हैं, और क्योंकि फेस्टिव सीजन है उसमें उनको कमाने का यही अच्छा वक्त होता है. ऐसे में उन लोगों की जो है वो पेट पर लात मार रहे हैं ये लोग, क्योंकि इनको धरने पे बैठना है अपेरेंटली. यहां पर अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, आइए जरा आपको बताते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर वकील को शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होने का अधिकार. जी हाँ, भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत ने सोमवार को कहा कि हर वकील को शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होने का अधिकार है. उन्होंने ये टिप्पणी मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दिल्ली में हुए प्रदर्शनों के दौरान वकीलों को हिरासत में लिए जाने और पुलिस की कथित जातियों से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान हुआ. वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण ने सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान वकीलों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जारी कोई आदेश सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है. लाइव लॉ के मुताबिक शंकर नारायण ने पीठ से पुलिस को संयम बरतने का निर्देश देने की मांग की. उन्होंने कहा कि वरिष्ठ वकीलों को सड़कों पर घसीटा जा रहा है, वकील फरासत को सड़कों पर घसीटा गया और ये बहुत गलत और शर्मनाक था. ऐसा नहीं होना चाहिए था. आपने हमसे संयम बरतने के लिए कहा, मुझे उम्मीद है कि वो आप पुलिस से भी यही कहेंगे. अब तक इस पीठ की ओर से ऐसा नहीं कहा गया. यू नो व्हाट, नाउ देयर इज अ थिंग कि यहाँ पर प्रॉब्लमैटिक तो ये सिचुएशन है. वेल ऑफ कोर्स, जो भी ऐसी चीज है, जो भी कह रहा है कि बीजेपी को जीतने में जिताने में जो है वो बहुत बड़ा हाथ था ज्ञानेश कुमार जी का, जो कि इलेक्शन कमीशन के हेड थे. जी हाँ, बात जो है वो उतनी पूरी तरह से बनती नहीं है. और SIR का भी मामला था जो कि नया कानून लाया गया है बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा और खासकर इलेक्शन कमीशन के द्वारा. सो ऐसे में यही कहा जा रहा था विपक्ष के द्वारा कि ज्ञानेश कुमार ने ऐसा किया, ज्ञानेश कुमार ने वैसा किया, SIR कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं और बीजेपी को जिताया, बीजेपी की सरकार हर बार इन्हीं की वजह से बनी. ये बात थोड़ी बनती नहीं है. और ऐसे में जो प्रूफ वो दे सकते थे वो दे नहीं पा रहे. मतलब बेसिकली विपक्ष के पास कोई भी प्रूफ नहीं है कि ज्ञानेश कुमार ने सच में ऐसा किया. नाउ आई एम नॉट सेइंग कि ज्ञानेश कुमार दूध का धुला हुआ इंसान है या ऐसा कुछ है. मतलब थिंग इज कि जब आपको डिबेट के द्वारा या डायलॉग के द्वारा इस चीज को ठीक करना चाहिए था तो आप वो कर नहीं पा रहे हो. आप लोगों को उकसा रहे हो कि आओ यहां पर, भिड़ जाओ यहां पर, भीड़ में आओ, बैठ जाओ, प्रदर्शन करो, ऐसा करो, वैसा करो. कंट्रीज ऐसे नहीं चल सकती. जी हाँ, फिर चाहे कोई गवर्नमेंट के एंटी हो या गवर्नमेंट के साथ हो. देर आर मेनी पीपल जो गवर्नमेंट के साथ नहीं है बट वो ये कह रहे हैं कि हर महीने आप धरने पे नहीं बैठ सकते. देर आर सम थिंग्स जो कि कोर्ट में ठीक होती हैं, जो कि वाद विवाद के साथ या डायलॉग आपके साथ ठीक होती है, आप हर बार ऐसा नहीं कर सकते। और ऊपर से लोग भी ऐसे हैं जो बहुत ही खतरनाक। नाउ दिस जेन ज़ी जनरेशन, जो कि लास्ट प्रोटेस्ट उन्होंने किया था उसी में ही उन्होंने इतनी खतरनाक चीजें कर दी थी। मतलब उनकी बातें, वो गालियां देते हैं, वो गंदी गंदी गालियां देते हैं लिटरली। एंड आई एम नॉट सेइंग दैट प्रधानमंत्री मोदी इज अ वेरी बेचारा पर्सन और उन्होंने कभी कुछ गड़बड़ नहीं की होगी यार, मुझे नहीं पता। बट द थिंग इज कि यहां पर किसी को भी गाली देना वो कहां की अच्छी बात है? फिर चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर विपक्ष के नेता हो, किसी को भी गाली पे आ जाना, नो दैट्स नॉट अ गुड थिंग। बट जेन ज़ी जनरेशन यही नहीं जानती है, उनको हुड़दंग मचाना है। एंड दैट्स व्हाई दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दैट थिंग। मतलब माना कि बहुत सारे लोग जो हैं उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उनके पास कुछ भी करने के लिए नहीं है, पर दैट डजंट मीन दिस इज व्हाट यू शुड डू। नाउ मैं ये नहीं कह रही कि डेमोक्रेसी के तहत आपको प्रोटेस्ट का अधिकार नहीं है। भाई अन्ना हजारे ने भी प्रोटेस्ट किया था, देर आर मेनी पीपल जिन्होंने इससे पहले भी प्रोटेस्ट किया है। बट आप क्या कर रहे हो जो प्रोटेस्ट जैसा नहीं दिख रहा है? जी हाँ, सोचने की जरूरत है इस मामले में। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन जबरदस्त है और ऐसा माहौल देखकर उसके बारे में सुनकर ऐसा ही फील होता है। ये गाना आपको वही बताने वाला है।

और इसी के साथ खबरों की बात हो रही है, अब जरा बात करते हैं एक बहुत ही बुरी खबर की, क्योंकि ये फिर से तेल से रिलेटेड है और हमले से रिलेटेड। भारतीय क्रू वाले टैंकर पर ड्रोन हमला, 9 नाविक बचाए गए, 2 लापता। जी हाँ, ओमान के पास भारतीय क्रू वाले एक टैंकर पर रविवार को ड्रोन से हमला हुआ। जहाज पर सवार 11 भारतीय नाविकों में से 9 को बचा लिया गया, जबकि 2 अभी भी लापता है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने रविवार रात को मामले की जानकारी साझा करते हुए 2 नागरिकों के लापता होने की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि 11 अक्टूबर को सोहार एंकरेज में भारतीय टैंकर एमटी पेट्रो डॉल्फिन पर ड्रोन से हमला किया गया। टैंकर पर 11 भारतीय नाविक सवार थे। 9 सदस्यों को सफलतापूर्वक बचा लिया गया और वे सुरक्षित हैं, जबकि 2 भारतीय नागरिक सभी अभी भी लापता हैं। स्थानीय तटरक्षक बल की ओर से खोज और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। सर्वानंद सोनोवाल ने कहा कि हम बचाव कार्यों में पूरी मदद देने और अपने लापता लोगों को सुरक्षित ढूंढने के लिए हर संभव कदम उठाने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में बने हुए हैं।

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वोलन गैबा। ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400-664-435 पर। याद रहे 0400-644-35 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निबिया के साथ। दोस्तों इसी के साथ सऊदी अरेबिया के लिए भी अच्छा वक्त नहीं चल रहा है, क्योंकि रियाद एयरपोर्ट पर फिर से हमला हुआ है। जी हाँ, ये हमला बहुत ही ज्यादा खतरनाक था पिछले वाले से ज्यादा, क्योंकि पहले ड्रोन हमले हो रहे थे लेकिन इस बार मिसाइल हमला हुआ। जी हाँ, 13 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और लिटरली 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं उस हमले में। मतलब ये फुल ब्लॉन वॉर चल रही है यहां पर हूतीज और साथ में सऊदी अरेबिया के। यमन की सरकार कोशिश कर रही है हूतीज को कंट्रोल करने में, लेकिन वो इस बारे में कामयाब नहीं हो पा रहा है। एटलीस्ट बाब अल मंडब, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो रास्ता है समुद्र से होता हुआ गुजरता हुआ, उस पर अपेरेंटली काबू कर लिया गया है यमन की सरकार के द्वारा, जो कि सरकार है। लेकिन जो हूतीज वाला जो पार्ट है उसने सऊदी अरेबिया की नाक में दम कर दिया है। नाउ दे आर लाइक कि ओके, हमेशा से हमें प्रताड़ित करने की कोशिश की गई है सऊदी अरेबिया की तरफ से। आपको मैं बता दूं कि ये दो ग्रुप्स हैं यहां पर, शिया और सुन्नी ग्रुप। सो शिया बहाल देश ईरान जो है वो हूती को सपोर्ट करता है, हूती जो है वो ईरान को सपोर्ट करते हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया जो है, जो सरकार यमन में बनी हुई है, सऊदी अरेबिया उसको बैक करता है। एंड दैट वाज द रीजन कि बहुत वक्त से इन दोनों के बीच में विवाद चल रहा था, क्योंकि अपेरेंटली वो सऊदी अरेबिया की सोच से जो है वो अग्री नहीं करते हैं। एंड दैट वाज द रीजन कि उन्हें लग रहा था कि उनको दबाने की कोशिश हो रही थी, तो अब वो सऊदी अरेबिया के खिलाफ पूरी तरह से फुल ब्लॉन वॉर में आ चुके हैं। अब ऐसे में और आगे क्या होगा, मक्का एग्रीमेंट जो है वो भी हुआ है। पाकिस्तान ने अपनी जो सेना है वो कुछ हद तक भेजी है, लेकिन पाकिस्तान का खुद का ही हाल बहुत ज्यादा खराब है। इनफैक्ट खैबर पख्तूनवा में तो इतना कहना पड़ा है कि वहां पर इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी है। लिटरली मतलब खैबर पख्तूनवा में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है पाकिस्तान सरकार से, क्योंकि अपेरेंटली वहां पर बहुत ही गड़बड़ हिसाब किताब हो गया है लोगों और सरकार और मिलिट्री के बीच में। जी हाँ, सो ऐसे में मक्का पैक्ट जो है उसके तहत वो कितना उसकी हेल्प कर पाएगा वो एक अलग क्वेश्चन है, लेकिन टर्की ने तो सीधा सीधा कह दिया कि हम अपनी जो फौज है उसको नहीं भेजने वाले हैं किसी और कंट्री का विवाद बढ़ाने में या अटैक करने में। भाई अटैक करने के लिए नहीं बुला रहा है सऊदी अरेबिया, तुम्हें अपनी रक्षा करने के लिए बुला रहा है। इसलिए पता चलता है कि जो मक्का पैक्ट है ये भी अपने आप में एक बहुत ही फनी चीज है। लाइक लिटरली कुछ भी चल रहा है इस दुनिया में। जब ये मक्का पैक्ट आया था जो एग्जिस्टेंस में, जब इन तीनों कंट्रीज ने मिलकर यह कहा था कि यू नो व्हाट, एक पे अटैक तीनों पे मारा जाएगा, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। टर्की ने तो अपना जो है वो धोती समेटी और साइड में हो गया, कहता मेरा नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है इससे, मैं तो नहीं अटैक कर सकता, मैं तो नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। सऊदी अरेबिया को उसने लिटरली वहां पर झुलसने के लिए छोड़ दिया, और पाकिस्तान भी कुछ ऐसा ही कह रहा था। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान की हालत क्या है, टर्की जो है उस मामले में थोड़ा अमीर कंट्री है, बट पाकिस्तान के साथ वो सिचुएशन नहीं है, तो उसे कहीं ना कहीं अपनी जो सेना है वो वहां पर भेजनी पड़ी है। अब वो कितने पैसे में भेजी है, दैट इज अ डिफरेंट केस ऑल टुगेदर, बट क्या वो हेल्पफुल है, क्या हूती है सऊदी अरेबिया को छोड़ने के लिए तैयार है? नो दे आर नॉट। सो ऐसे में क्या होगा, लोगों का क्या हाल होगा, वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी के लिए जितनी भी कंट्रीज है जहां के लोग सऊदी अरेबिया में रहते हैं, उन्होंने एडवाइजरी जारी की है कि अपने घरों के अंदर रहिए, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, और सुरक्षा निर्देशों का पालन कीजिए जो भी वहां की सरकार कह रही है। जी हाँ, यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: Hi, this is Amitabh Bachchan.
3: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
8: Hi, मैं हूँ Tulsi Kumar और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
9: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shah Rukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgn और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
11: नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिसबेन वालों अधिकारित, ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिसबेन।
12: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899 and quote code word Brisbane. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
13: Hello friends, Queensland Fiji Football Association's prestigious NILTEC QIDC 2026 hone ja raha hai from Wednesday 21st October to Sunday 25th October at the prestigious Olympic Football Club. Pehli baar Brisbane Nasinu honge QFFA family ka hissa, saath hi dekhne aa rahe hain Suva, Lambasa, Nandi, Lotoka, Ba, Tavua, Rewa, Nandroga and Ra. Khane mein hogi the famous butter chicken duck curry, pulao aur mouth watering Fiji style barbecue. Are are, hum ice blocks ko kaise bhul sakte hain? To aa jao maidan mein aur apni Fiji community ke saath games aur khane ka lutf uthao. Zyada jankari ke liye call karein Chairperson Lawrence on 0407-764-272 ya Secretary Ray Ali on 0413-868-240 ya phir President Jitendra Prasad on 0402-422-777.

नमस्ते के साथ मैं किस्सा आपको सुनाने वाली हूँ द जानी ऑफ बॉलीवुड के बारे में, जी हाँ, अभी कुछ वक्त पहले, कुछ दिन पहले उनका जन्मदिन होकर हटा है। ऑफ कोर्स वो अब हमारे, उनकी कहानियां और उनकी अदायगी सब हमारे साथ है। जी हाँ, रजा मुराद जो कि एक बहुत ही बड़े और फेमस एक्टर हुए हैं, वो कहते हैं कि राजकुमार साहब के जो एक्टिंग के शुरुआती दिन थे उस वक्त की एक किस्सा है जो कि दिलचस्प तो हम कहेंगे लेकिन साथ में गड़बड़ किस्सा भी था। जी हाँ, ये वो वक्त था जब राजकुमार जो है अभी अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत उन्होंने की ही थी और एक दिन वो घूम रहे थे अपने दोस्त और अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड के साथ जुहू बीच पर। जी हाँ, जुहू बीच पर घूमते घूमते किसी ने उनके दोस्त की गर्लफ्रेंड को कुछ कह दिया, कुछ अभद्र टिप्पणी उन पर कर दी और इस बात को सुनकर राजकुमार को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया, इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि उन्होंने उस बंदे को पीटना शुरू कर दिया जिसने वो अभद्र टिप्पणी उनकी दोस्त की गर्लफ्रेंड के बारे में की थी। और उन्होंने उस बंदे को इतना मारा कि उसकी जान ही चली गई। जी हाँ, सो बेसिकली राजकुमार का ये भी एक किस्सा है, मतलब उनके जिंदगी। इसके बाद राजकुमार पर केस हुआ, ऑफ कोर्स बहुत अदालतों के चक्कर उन्हें लगाने पड़े, लेकिन क्योंकि उन्होंने ये किया था इसलिए क्योंकि उस व्यक्ति ने अभद्र टिप्पणी उनके दोस्त की गर्लफ्रेंड पर या किसी महिला पर की थी, इस वजह से उन्हें बरी कर दिया गया। लेकिन ऑफ कोर्स ये मामला इतना आसान नहीं था, काफी वक्त तक उन्हें अदालत के धक्के खाने पड़े। और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले वो खुद भी पुलिस में काम किया करते थे। जी हाँ, मतलब एक्टिंग की दुनिया में आने से पहले वो पुलिस में काम किया करते थे, इसलिए गुस्से की कमी उनमें कभी भी नहीं थी। मतलब आपको लगता है कि ये सिर्फ जानी और ये स्वैग और ये एटीट्यूड उनमें वैसे ही था, नो, उनमें गुस्सा भी बहुत ज्यादा था। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके बहुत महीने के वक्त जो है बाद उनको इस केस से छुटकारा मिला, और वो भी पूरी तरह से नहीं मिला, लेकिन उन्हें जो है वो बरी किया गया और फिर वो अपनी एक्टिंग में अपने आगे के वक्त जो है आने वाले दिनों में वो काम कर पाए। मतलब कुछ वक्त के लिए उनकी एक्टिंग पर पूरी तरह से ठप्पू लग गया था क्योंकि लिटरली उन्होंने पीट पीट कर किसी की जान ले ली थी। वेल ऑफ कोर्स यहाँ पे ये कहना जरूरी होगा कि उन्होंने वो इसलिए किया था क्योंकि किसी ने उनके दोस्त की गर्लफ्रेंड पर अभद्र टिप्पणी कर दी थी, लेकिन ऐसे में भी क्या किसी को इतना मारा जाना चाहिए कि उसकी जान चली जाए? वेल, औरतों यानी कि फीमेल्स के पर्सपेक्टिव से ये डेफिनेटली लाजमी है, लेकिन अगर हम कानून के पर्सपेक्टिव से देखें तो नहीं, ये नहीं है लाजमी। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से जो कि अगेन खूबसूरत है और काफी खूबसूरत है।

0: दिवाली का त्योहार आ गया है दोस्तों, श्री सनातन धर्म हिंदू एसोसिएशन ऑफ क्वींसलैंड इंक ले आए हैं एनुअल दिवाली मेला सैटरडे 24 अक्टूबर 2026 फ्रॉम 4 PM। $15 पर पर्सन है एंट्री फी और चिल्ड्रन अंडर 12 इयर्स फ्री। वेजिटेरियन डिनर इंक्लूडेड एट सनातन सेंटर, 550 वेम्बले रोड, बेरनबाग, क्वींसलैंड 4117। एंजॉय कीजिए स्टॉल्स, फ्री किड्स क्राफ्ट एक्टिविटीज, कल्चरल परफॉर्मेंसेज, हिना और दिया लाइटिंग सेरेमनी भी। और जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट कोऑर्डिनेटर अशोक प्रसाद ऑन 0419334418 या फिर सेक्रेटरी राजेंद्र प्रसाद ऑन 0410454649। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स का जश्न मनाइए पूरी फैमिली और अपने कम्युनिटी के साथ। लाइट्स यूनाइट अस ऑल।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी में।
2: दोस्तों इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब में अर्जनीविया के साथ। दोस्तों इसी के साथ शैलेंद्र सिंह एक बहुत ही जबरदस्त म्यूजिक डायरेक्टर हुए हैं और एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि आपके फेवरेट सिंगर कौन थे तो वो बड़े अच्छे से कहते हैं कि मेरे फेवरेट सिंगर तो हमेशा से और आगे आने वाले हर दिन तक सिर्फ और सिर्फ रफी साहब। और जिस पैशन से वो ये बोलते हैं ना वो बड़ा ही जबरदस्त था। मतलब उनकी आंखों में दिख रहा था कि सच में उन्हें रफी साहब की गायकी से इतना ज्यादा प्यार है। उन्होंने आगे एक और चीज कही, उन्होंने कहा कि रफी साहब का मुझसे बड़ा फैन इस दुनिया में हो नहीं सकता। जी हाँ, शैलेंद्र कहते हैं कि मैंने रफी साहब के साथ गाना भी गाया है और ऐसे में मैं कह सकता हूं कि उनका कोई भी गाना गाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जी हाँ, और ये उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि रफी साहब किसी भी गाने को इतनी आसानी से गा लेते थे कि लगता था कि वो गाना बहुत आसान है, लेकिन जब आप उस गाने को गाने की कोशिश करते थे या फिर जब कोई और उस गाने को गाने की ट्राई करता था तो वो सारी की सारे जो चैलेंजेस हैं वो सामने आते थे। मतलब वो फ्लेक्सिबिलिटी, वो रूहानीपन जो वो अपने गानों में लेकर आते थे। अगर वो सैड सॉन्ग गाते थे तो वो सैडनेस जो है वो श्रोता सुन पाता था, फील कर पाता था अपने बॉडी के हर एक अंग अंग में। शैलेंद्र यही कहते हैं कि आप उनके साथ गाओगे तो पता चलेगा कि क्या लेवल के वो गायकी करते थे। जी हाँ, वो इतनी सारी चीजों को और इतनी बड़ी बड़ी चीजों को इतनी आसानी से कर लिया करते थे कि आप जब वो करते थे तो आपको पता चलता था कि नहीं नहीं ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा कि रफी साहब का मुझसे बड़ा फैन नहीं हो सकता और मैं हमेशा से और हमेशा रफी साहब का ही फैन रहूंगा। जी हाँ, ये कहना है मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर शैलेंद्र का। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना अब आपके लिए, लेकिन इसी के साथ हम आपसे विदा भी ले रहे हैं, सो जाने का टाइम भी हो गया है। जी हाँ, जा रहे हैं हम, वापस आएंगे अब कल यानी कि ट्यूसडे को। अभी तो जो हफ्ता है यानी कि वीक की शुरुआत हुई है तो अभी तो बस शुरुआत हुई है और मिलना कल भी होगा, परसों भी होगा और उसके अगले दिन भी होगा। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि बारिश होने के चांसेस हैं कल, तो छाते के बिना बिल्कुल मत निकलिएगा और फिर भीगने से बच जाइएगा। जी हाँ, इसी के साथ हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए, सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। ये लास्ट सॉन्ग आप सब के लिए मेरी तरफ से, बाय, सी यू, टाटा।

दिवाली का त्योहार आ गया है दोस्तों, श्री सनातन धर्म हिंदू एसोसिएशन ऑफ क्वींसलैंड इंक ले आए हैं एनुअल दिवाली मेला सैटरडे 24 अक्टूबर 2026 फ्रॉम 4 PM। $15 पर पर्सन है एंट्री फी और चिल्ड्रन अंडर 12 इयर्स फ्री। वेजिटेरियन डिनर इंक्लूडेड एट सनातन सेंटर, 550 वेम्बले रोड, बेरनबाग, क्वींसलैंड 4117। एंजॉय कीजिए स्टॉल्स, फ्री किड्स क्राफ्ट एक्टिविटीज, कल्चरल परफॉर्मेंसेज, हिना और दिया लाइटिंग सेरेमनी भी। और जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट कोऑर्डिनेटर अशोक प्रसाद ऑन 0419334418 या फिर सेक्रेटरी राजेंद्र प्रसाद ऑन 0410454649। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स का जश्न मनाइए पूरी फैमिली और अपने कम्युनिटी के साथ। लाइट्स unite us all.

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनीबैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनीबैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

0: चलो चलो दीपावली आ गई है। शिव शक्ति कल्चरल एंड एजुकेशन सिटी ऑफ मॉर्टन बे एसोसिएशन इन कॉरपोरेशन पेश करते हैं दीपावली उत्सव 2026 फेस्टिवल ऑफ लाइट। सैटरडे 24 अक्टूबर को स्टॉल्स ओपन होंगे फ्रॉम 3 PM और फॉर्मल प्रोग्राम शुरू होगा फ्रॉम 7 PM एट पाइन रिवर स्टेट हाई स्कूल ऑडिटोरियम ग्राहम्स फ्रंट असेंबली हॉल स्ट्रैट पाइन। ध्यान रहे एंट्री होगी वाया एश कोट। होंगे बहुत सारे स्टॉल्स जैसे हिना रंगोली कॉम्पिटिशन वेजिटेरियन क्यूजीन किड्स ड्रेस अप कॉम्पिटिशन कल्चरल एंड बॉलीवुड परफॉर्मेंसेज और नव दुर्गा ड्रामेटिक डांस राफल्स एंड डांस द नाइट अवे के साथ लाइव म्यूजिक भी। टिकट प्राइजेस आर $20 पर हेड $50 पर फैमिली जिसमें कपल्स के साथ 2 किड्स अंडर 16 इयर्स आर इंक्लूडेड और किड्स अंडर 12 यस होंगे फ्री। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नीलिमा ऑन 0405-409-156 आई रिपीट 0405-409-156 या आप ब्रिस्वानी की ऑफिशियल वेबसाइट www.briswani.com पर इवेंट सेक्शन में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। आइए मिलकर दिवाली का फेस्टिवल मनाएं। दीपावली उत्सव 2026 Saturday 24th October 2026 event proudly supported by the city of Moreton Bay.
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400-664-435 पर, याद रहे 0400-644-435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: से ऑनलाइन और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
0: अरे रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: Hi, this is Amitabh Bachchan.
3: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
8: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
9: से। To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। ब्रिस्बेन में बच्चों की अनोखी पहल। ब्रिस्बेन से एक बेहद प्यारी खबर सामने आई है। शहर में इस महीने के आखिर में 25 अक्टूबर को बच्चों के लिए एक स्पेशल काइंडनेस ट्रेजर हंट, जी हाँ, मतलब काइंडनेस ट्रेजर हंट आयोजित होने जा रहा है, जिसमें शहर के बच्चे पुलिसकर्मियों, फायर फाइटर्स और अस्पताल के स्टाफ को अपने हाथों से बने अप्रिशिएशन गिफ्ट देकर उनका शुक्रिया अदा करेंगे। वहीं साउथ बैंक पार्कलैंड्स में कम्युनिटी आर्ट, जी हां, ब्रिस्बेन के साउथ बैंक पार्कलैंड्स में जल्द ही एक विशाल दिल के आकार की आर्ट वर्क तैयार की जाएगी, जिसमें शहर के सैकड़ों बच्चे अपने हाथों से बनी टिन की कलाकृतियां जोड़कर कम्युनिटी यूनिटी का संदेश देंगे, जिसे बाद में चिल्ड्रंस हॉस्पिटल को समर्पित किया जाएगा। वहीं ब्रिस्बेन वेदर अपडेट, ब्रिस्बेन के मौसम की बात करें तो यहां इन दिनों सुहाना और खुशनुमा मौसम बना हुआ है। स्प्रिंग सीजन के चलते लोग पार्कों में आउटडोर एक्टिविटीज का जमकर लुफ्त उठा रहे हैं और धूप भी खिली हुई है। वहीं कम्युनिटी सेफ्टी और लोकल ड्राइव, ब्रिस्बेन सिटी काउंसिल ने स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए नए अभियानों की शुरुआत की है, जिसमें स्थानीय लोगों और स्कूलों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। इसके साथ ब्रिस्बेन में नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, शहर के विकास को रफ्तार देने के लिए ब्रिस्बेन में कुछ नए पब्लिक ट्रांसपोर्ट और पार्क अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट्स का काम तेज हो गया है, जिससे आने वाले समय में यहां के लोगों का आवागमन और आसान हो जाएगा। वहीं लोकल कल्चरल इवेंट्स की धूम, ब्रिस्बेन के कल्चरल और आर्ट्स हब में इन दिनों स्थानीय कलाकारों के लिए लाइव म्यूजिक और थिएटर शोज का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वीकेंड पर युवाओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इसके साथ अब जरा चलते हैं भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले दिल्ली मेट्रो और सुरक्षा के कड़े इंतजाम। राजधानी दिल्ली में आज सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। कुछ राजनीतिक प्रदर्शनों और मार्च के चलते दिल्ली के कई प्रमुख मेट्रो स्टेशन जैसे राजीव चौक, सेंट्रल सचिवालय और पटेल चौक के कुछ गेट सुरक्षा कारणों से दोपहर तक बंद रखे गए हैं। वहीं महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग MPSC पेपर लीक पर बड़ा एक्शन। महाराष्ट्र में MPSC परीक्षा के पेपर लीक विवाद को लेकर बड़ा प्रशासनिक एक्शन लिया गया है। सरकार ने आयोग के चेयरमैन को अनिवार्य छुट्टी पर भेज दिया है और इस पूरी गड़बड़ी की उच्च स्तरीय जांच के लिए वरिष्ठ IAS अधिकारी तुकाराम मुंडे को कमान सौंपी गई है। वहीं मौसम का हाल, तापमान में बदलाव। जी हां, मौसम विभाग IMD के अनुसार उत्तर भारत के कई हिस्सों में अब मौसम थोड़ा बदलने लगा है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में अगले कुछ दिनों तक अधिकतम तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है, जिससे हल्की गुलाबी ठंड की आहट महसूस होने लगी है। वहीं भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा। जी हां, भारतीय नौसेना की मारक क्षमता को और मजबूत करते हुए मुंबई में स्वदेशी एंटी सबमरीन युद्ध

0: पोत ASW INS मंगरोल को आधिकारिक तौर पर बेड़े में शामिल कर लिया गया है। इसके साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, परिवार और रिश्तों से जुड़े एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि पति द्वारा अपनी बुजुर्ग और विधवा मां को छोड़ने के लिए पत्नी पर दबाव बनाना मानसिक प्रताड़ना यानी क्रूरता की श्रेणी में आता है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले रूस यूक्रेन युद्ध पर नया अपडेट। यूक्रेन और रूस के बीच जारी तनाव के बीच एक नया मोड़ आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच एनर्जी सीजफायर यानी ऊर्जा क्षेत्र में संघर्ष विराम का ऐलान किया है। वहीं जिबूती नाव हादसा दुखद आंकड़े। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास जिबूती के तट पर हुए भीषण नाव हादसे में मरने वाले प्रवासियों की संख्या बढ़कर 139 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र की प्रवास एजेंसी IOM ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख जताते हुए समंदर के रास्ते होने वाले अवैध और खतरनाक सफर को लेकर चेतावनी जारी की है। इसी के साथ सऊदी अरब में एयरपोर्ट पर हमला। जी हां, मध्य पूर्व में सुरक्षा को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सऊदी अधिकारियों के अनुसार हूती विद्रोहियों द्वारा किए गए एक और मिसाइल हमले की वजह से रियाद एयरपोर्ट के पास स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। वहीं ब्रिटेन में ब्रेक्सिट को लेकर नया बहस। जी हां, ब्रिटेन की राजनीति में एक बार फिर पुराना मुद्दा गर्मा गया है। वहां के सीनियर नेताओं ने यह बयान दिया है कि ब्रेक्सिट जनमत संग्रह के दौरान रूस की तरफ से हस्तक्षेप किए जाने के स्पष्ट संकेत मिले थे, जिसकी जांच की मांग फिर उठी है। वहीं अमेरिका में हेल्थ केयर सेक्टर में संकट। जी हां, अमेरिका में मेट्रिक और मेडिकेड फंड में कटौती का असर अब आम लोगों पर दिखने लगा है। देश के कई हिस्सों में मैटर्निटी वार्ड्स बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं, जिससे गर्भवती महिलाओं और स्वास्थ्य सेवाओं के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है। इसके साथ फिलिस्तीन के समर्थन में लंदन में प्रदर्शन। लंदन की सड़कों पर हजारों लोग इकट्ठा हुए और पिछले 3 सालों से चल रहे संघर्ष के बीच फिलिस्तीनी नागरिकों के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन किया, साथ ही शांति बहाली की पुरजोर मांग भी की। इसके साथ अब जरा चलते हैं खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले भारत और वेस्टइंडीज क्रिकेट सीरीज। क्रिकेट के मैदान से बड़ी खबर है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच रोमांचक T20 और वनडे मुकाबलों की सीरीज का रोमांच चरम पर है। इसके साथ बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप अपडेट। बैडमिंटन सर्किट में इस अक्टूबर महीने में कई बड़े टूर्नामेंट चल रहे हैं। भारतीय शटर्स इंटरनेशनल टूर्नामेंट में अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। वहीं एशियाई पैरा खेलों की तैयारी। आने वाले हफ्तों में शुरू होने वाले एशियाई पैरा खेलों के लिए विभिन्न देशों के एथलीटों ने कमर कस ली है। भारतीय दल के खिलाड़ी भी इस महामुकाबले में अपना बेस्ट देने के लिए कड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं। वहीं प्रीमियर लीग फुटबॉल का रोमांच। इंग्लिश प्रीमियर लीग EPL में इस हफ्ते फुटबॉल फैंस को जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है। चेल्सी और एवर्टन जैसी टीमों ने अपने शानदार मुकाबलों में बेहतरीन जीत दर्ज करके अंक तालिका में स्थिति मजबूत की है। वहीं Formula 1 और मोटर स्पोर्ट्स अपडेट। मोटर स्पोर्ट्स प्रेमियों के लिए सीजन के अगले लेग की तैयारी, लीग की तैयारी तेज हो गई है। रेसिंग ट्रैक पर टीमों ने अपनी गाड़ियों की स्पीड और स्ट्रेटेजी पर काम करना शुरू कर दिया है, ताकि चैंपियनशिप की रेस में बढ़त बनाई जा सके। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अब आपसे कल। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वान।
1: नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। अते लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित Authorized by the Queensland Government.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899 and quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Mogill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
3: Hello friends, Queensland Fiji Football Association's prestigious Nil Tech QIDC 2026 hone ja raha hai from Wednesday 21st October to Sunday 25th October at the prestigious Olympic Football Club. Pehli baar Brisbane Nasinu honge QFFA family ka hissa, saath hi dekhne aa rahe hain Suva, Lambasa, Nandi, Lotoka, Ba, Tavua, Rewa, Nandroga and Ra. Khane mein hogi the famous butter chicken duck curry, pulao aur mouth watering Fiji style barbecue. Are are, hum ice blocks ko kaise bhool sakte hain? To aa jao maidan mein aur apni Fiji community ke saath games aur khane ka lutf uthao. Zyada jankari ke liye call karein Chairperson Lawrence on 0407-764-272 ya Secretary Ray Ali on 0413-868-240 ya phir President Jitendra Prasad on 0402-422-777.

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Hello friends, Queensland Fiji Football Association's prestigious Nil Tech QIDC 2026 hone ja raha hai from Wednesday 21st October to Sunday 25th October at the prestigious Olympic Football Club. पहली बार ब्रिस्बेन नसीनू होंगे QFFA फैमिली का हिस्सा, साथ ही देखने आ रहे हैं सुवा, लंबासा, नैंडी, लोटोका, बा, टावुआ, रेवा, नांद्रोगा एंड रा। खाने में होगी द फेमस बटर चिकन डक करी, पुलाव और माउथ वाटरिंग फिजी स्टाइल बारबेक्यू। अरे अरे, हम आइस ब्लॉक्स को कैसे भूल सकते हैं। तो आ जाओ मैदान में और अपनी फिजी कम्युनिटी के साथ गेम्स और खाने का लुत्फ उठाओ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें चेयरपर्सन लॉरेंस on 0407-764-272 ya secretary Ray Ali on 0413-868-240 ya phir president Jitendra Prasad on 0402-422-777।

0: ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿੱਟ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ QLD ਖੋਜੋ ਜਾਂ 132 ANT ਯਾਨੀ ਕਿ 132-268 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। Phone 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।
2: तुम जीत गए।

0: ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: क्या आपकी शादी होने वाली है तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
2: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
2: थैंक्स अटन यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: चलो चलो दीपावली आ गई है। शिव शक्ति कल्चरल एंड एजुकेशन सिटी ऑफ मॉडर्न डे एसोसिएशन इन कॉर्पोरेशन पेश करते हैं दीपावली उत्सव 2026 फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। सैटरडे 24 अक्टूबर को स्टॉल्स ओपन होंगे फ्रॉम 3 PM और फॉर्मल प्रोग्राम शुरू होगा फ्रॉम 7 PM एट पाइन रिवर स्टेट हाई स्कूल ऑडिटोरियम, ग्राहम्स फ्रंट असेंबली हॉल, स्ट्रैट पाइन। ध्यान रहे, एंट्री होगी वाया एश कोट। होंगे बहुत सारे स्टॉल्स जैसे हिना, रंगोली कॉम्पिटिशन, वेजिटेरियन क्यूजीन, किड्स ड्रेस अप कॉम्पिटिशन, कल्चरल एंड बॉलीवुड परफॉर्मेंसेज और नव दुर्गा ड्रामेटिक डांस, रैफल्स एंड डांस द नाइट अवे के साथ लाइव म्यूजिक भी। टिकट प्राइसेज आर $20 पर हेड, $50 पर फैमिली जिसमें कपल्स के साथ 2 किड्स अंडर 16 इयर्स आर इंक्लूडेड और किड्स अंडर 12 यस होंगे फ्री। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नीलिमा ऑन 0405-409-156, आई रिपीट 0405-409-156 या आप ब्रिस्वानी की ऑफिशियल वेबसाइट www.briswani.com पर इवेंट सेक्शन में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। आइए मिलकर दिवाली का फेस्टिवल मनाएं। दीपावली उत्सव 2026 Saturday 24th October 2026 event proudly supported by the city of Moreton Bay.
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
2: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
1: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
2: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG, वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए. म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस. फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर. सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है. ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं. हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा. प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट. निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम.
2: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना.
1: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co. स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009. प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स. कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड.

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स, कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 AM. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

0: चलो चलो दीपावली आ गई है। शिव शक्ति कल्चरल एंड एजुकेशन सिटी ऑफ मॉडर्न डे एसोसिएशन इन कॉरपोरेशन पेश करते हैं दीपावली उत्सव 2026 फेस्टिवल ऑफ लाइफ। सैटरडे 24 अक्टूबर को स्टॉल्स ओपन होंगे फ्रॉम 3 PM और फॉर्मल प्रोग्राम शुरू होगा फ्रॉम 7 PM एट पाइन रिवर स्टेट हाई स्कूल ऑडिटोरियम ग्राहम स्प्रॉट असेंबली हॉल स्ट्रैट पाइन। ध्यान रहे एंट्री होगी वाया एश कोट। होंगे बहुत सारे स्टॉल्स जैसे हिना रंगोली कॉम्पिटिशन वेजिटेरियन क्यूजीन किड्स ड्रेस अप कॉम्पिटिशन कल्चरल एंड बॉलीवुड परफॉर्मेंसेज और नव दुर्गा ड्रामेटिक डांस Raffles and dance the night away ke saath live music bhi. Ticket prices are $20 per head, $50 per family, jisme couples ke saath 2 kids under 16 years are included. Aur kids under 12, yes, honge free. Zyada jankari ke liye contact Nilima on 0405-409-156. I repeat, 0405-409-156. Ya aap Briswani ki official website www.briswani.com par event section mein jaakar bhi jankari le sakte hain. Aaiye milkar Diwali ka festival manaye. Deepavali Utsav 2026. Saturday 24th October 2026. Event proudly supported by the city of Moreton Bay.
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: Hi, this is Amitabh Bachchan.
3: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: Hi, this is Salman Khan.
6: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
8: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
9: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से।
10: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
11: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
12: Kiran, I love you. I love you, Kiran.
13: वाह, क्या तेवर है सुनील के आने का?

हां जी वेलकम बैक जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101.1 ते जी आरजे संदेश चालक दे नाल से बने हुए। देखो कोक स्टूडियो भारत ने ना अपना नवा गीत कचौड़ी गली जा तो रिलीज किया ना, हर कोई इस गाने की गल कर रहा है। भोजपुरी लोक गीत का सब तो सुंदर मनिया जाने वाला यह गाना रेखा भारद्वाज ने गाया है। गाने का नवा वर्जन कचौड़ी गली हर किसी की जुबान से छाया होया है जो लोग संगीत ते आधारित है। इस बार शो ने भोजपुरी दी लह विच बनारस दी गलियां दी धुन प्रस्तुत कीती है। एक सदी तो भी वध पुरानी कचौड़ी गली गाने नू रेखा भारद्वाज ते बिहार दे इंडी लोक गायक उपल उदित ने गाया ते निशांत नागर ने इसनू तैयार कीता है। ये गाना ना एक अजिहे समय ते कहानी नू पुनर्जीवित करता है जो कदे होया करता सी। एक अजिहे गाने नू जो एक सदी तो वध समय दी परंपरा दसदा है। ते अज इस गाने दी पूरी कहानी मैं दसदी हैगी आ तुहानू कि किवें किस दौर दे विच लिखिया गया सी, की कुछ होया सी, इस शुरुआत किवें सी। इस दी शुरुआत इस लाइन नाल हुंदी है कि सेजिया पे लोटे काला रंग। बड़ा सोहना जिहा गीत हैगा, तुसीं जरूर सुनियो, पर मैं तुहानू इस दी कहानी मैं सुना दिंदी हां। गीत तुसीं यूट्यूब ते जरूर सुनियो।

0: Hello friends, Queensland Fiji Football Association's prestigious Nil Tech QIDC 2026 hone ja raha hai from Wednesday 21st October to Sunday 25th October at the prestigious Olympic Football Club. पहली बार ब्रिस्बेन नसीनू होंगे QFFA फैमिली का हिस्सा, साथ ही देखने आ रहे हैं सुवा, लंबासा, नैंडी, लोटोका, बा, टावुआ, रेवा, नांड्रोगा एंड रा। खाने में होगी द फेमस बटर चिकन डक करी, पुलाव और माउथ वाटरिंग फिजी स्टाइल बारबेक्यू। अरे अरे, हम आइस ब्लॉक्स को कैसे भूल सकते हैं। तो आ जाओ मैदान में और अपनी फिजी कम्युनिटी के साथ गेम्स और खाने का लुत्फ उठाओ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें चेयरपर्सन लॉरेंस on 0407-764-272 ya secretary Ray Ali on 0413-868-240 ya phir president Jitendra Prasad on 0402-422-777.
1: Honey, ye tum kahan le ja rahi ho? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

हां जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसोनी वंसन वन एम ते चार छे संदेश अलग दराल से बने हुए। अगली जेड़ी गल हैगी है वह है तवायफ गौहर जान दी। गौहर जान प्यार विच दर्द चो गुजरी सी, यह कहा जाता है। कहा जाता है कि कहानी कितने ना कि उसकी है। मनिया जाता है कि यह कजरी यानी कि मानसून विच गाया जाने वाला एक लोक गीत 19वीं शताब्दी विच बनाया गया सी। ए गीत एक औरत दे विरह दे दर्द नू बयां करता हैगा। इस औरत नू तवायफ कहंदे हैगे लोग, सानू नहीं पता कहंदे हैगे ने, रिपोर्ट्स कहंदियां ने। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक ना यह कहानी लगभग 200 साल पहला किसी गौहर जान दी सी जो बनारस दी दाल मंडी विच रहंदी सी ते एक तवायफ सी। अजिहा मन्निया जांदा है कि वह कचौड़ी गली विच अपनी पालकी विच घूमण जांदी सी ते चौक दे कोलो गुजरदे समय ना जदों लंघदे समय ना उन्होंने असलम नाम दा एक आदमी उन्होंने मिलिया सीगा। उत्थों ही तां कहानी शुरू हुई सी। दस दिया उस बारे होर ज्यादा डिटेल्स दे विच पर पहला सुनो एक ही।

हां जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101.1 FM ते जी आर चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो एक गाना ना कचौड़ी गली हैगा जेड़ा, एक गाना पूर्वी उत्तर प्रदेश ते बिहार दे कुछ हिस्सों विच फैले पूर्वांचल ते तो हजारा पुरशां दे पलायन दा भी मतलब संबंध रखता हैगा, जो 19वीं सदी दे विच ना एगलो बर्मी युद्ध के दौरान शुरू होया सी। हजारा आम नागरिकां नूं अंग्रेजां वल्लों ना जबरदस्ती रंगून या बर्मा विच सिपाही बना के भेजा गया सी। 1824 तो 1937 तक बर्मा ब्रिटिश शासन के अधीन सी। हालांकि गाने विच उड़ल जहजवा शब्द का इस्तेमाल किया गया है, पर इस पर जेड़े पुरुष सीगे नो अक्सर भीड़ भाड़ वाले स्टिमशियों विच भेजा जांदा सी, जो कदे कलकत्ता तो रवाना हुंदे सीगे।

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
2: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law,

हाँ जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिसोनी 1.71 FM ते जी आरचे संदेश अलग दिराल से बने हुए हो। देखो कुछ चौड़ी गली बारे में तो इन्ना कुछ दास्ता है का है, तुसी देखियो जरूर एक बार गीत ते तुसी जेड़े घर दे विच बुजुर्ग होणगे ना शायद उन्हां नूं कुछ पता होवे या फिर गूगल करो तो थानू पता लग जाना है कि यह गल्ला किनिया कुछ सच है क्या ने। हुण देखो इस दे नाल होर भी गल्ला है ने जुड़िया हुई जिवें 1885 दे युद्ध दा जिक्र। 40,000 सैनिकां दे विचों ना 15,000 मलेरिया पेचिश ते घने जंगलां विच होई लड़ाई दे कारण शहीद हो गए सी। हालांकि युद्ध 1885 विच खत्म हो गया सी पर ब्रिटिश जिहड़ियां नीतियां सीगियां उन्हां दे कारण 1900 दे दहाके विच वी पलायन जारी रहा। युद्ध ने व्यापक आर्थिक अस्थिरता लिया दी सी ते बर्मा विच बंदरगाह शहरां विच रोजगार दे अवसर उपलब्ध सी। इन्हां लोकां ने बंदरगाहां चौलां दीआं मिलां ते दिहाड़ी मजदूरां दे रूप विच काम कीता। बर्मा ब्रिटिश प्रणाली यानी कि काला पानी दे लई मशहूर सी इह। इस दे तहत भारतीय कैदियां नूं अंडमान ते सैलूलर जेल विच कैद कीता जांदा सीगा।

0: ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿੱਟ ਬਣਾਓ। ਅੱਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਦਰਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਹੋਰ ਜਾਣੋ, ਬੁਸ਼ ਫਾਇਰ ਸਰਵਾਈਵਲ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪਾਲ ਕਰੋ। क्वींसलैंड सरकार
1: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो उमसोग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे, उमसोग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
3: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अगे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अगे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथोराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

चलो चलो दीपावली आ गई है। शिव शक्ति कल्चरल एंड एजुकेशन सिटी ऑफ मॉडर्न डे एसोसिएशन इन कॉरपोरेशन पेश करते हैं दीपावली उत्सव 2026 फेस्टिवल ऑफ लाइट। सैटरडे 24 अक्टूबर को स्टॉल्स ओपन होंगे फ्रॉम 3 PM और फॉर्मल प्रोग्राम शुरू होगा फ्रॉम 7 PM एट पाइन रिवर स्टेट हाई स्कूल ऑडिटोरियम ग्राहम स्प्रॉट असेंबली हॉल स्ट्रैट पाइन। ध्यान रहे एंट्री होगी वाया एश कोट। होंगे बहुत सारे स्टॉल्स जैसे हिना रंगोली कंपटीशन, वेजिटेरियन क्यूजीन, किड्स ड्रेस अप कॉम्पिटिशन, कल्चरल एंड बॉलीवुड परफॉर्मेंसेज और नव दुर्गा ड्रामेटिक डांस, रैफल्स एंड डांस द नाइट अवे के साथ लाइव म्यूजिक भी। टिकट प्राइसेज आर $20 पर हेड, $50 पर फैमिली जिसमें कपल्स के साथ 2 किड्स अंडर 16 इयर्स आर इंक्लूडेड और किड्स अंडर 12 यस होंगे फ्री। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नीलिमा ऑन 0405-409-156 आई रिपीट 0405-409-156 या आप ब्रिस्वानी की ऑफिशियल वेबसाइट www.briswani.com पर इवेंट सेक्शन में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। आइए मिलकर दिवाली का फेस्टिवल मनाएं। दीपावली उत्सव 2026 Saturday 24th October 2026 इवेंट प्राउडली सपोर्टेड बाय द सिटी ऑफ मॉर्टन बे।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अगे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन, जो के अगे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां, इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथोराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तों बचाव दी योजना बनाओ, ताजे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार

0: दिवाली का त्योहार आ गया है दोस्तों, श्री सनातन धर्म हिंदू एसोसिएशन ऑफ क्वींसलैंड इंक ले आए हैं एनुअल दिवाली मेला सैटरडे 24 अक्टूबर 2026 फ्रॉम 4 PM। $15 पर पर्सन है एंट्री फी और चिल्ड्रन अंडर 12 इयर्स फ्री। वेजिटेरियन डिनर इंक्लूडेड एट सनातन सेंटर, 550 वेम्बले रोड, बेरनबाग, क्वींसलैंड 4117। एंजॉय कीजिए स्टॉल्स, फ्री किड्स क्राफ्ट एक्टिविटीज, कल्चरल परफॉर्मेंसेज, हिना और दिया लाइटिंग सेरेमनी भी। और जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट कोऑर्डिनेटर अशोक प्रसाद ऑन 0419334418 या फिर सेक्रेटरी राजेंद्र प्रसाद ऑन 0410454649। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स का जश्न मनाइए पूरी फैमिली और अपने कम्युनिटी के साथ। लाइट्स यूनाइट अस ऑल।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल प्रिंस ज्वेलर्स @bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज rani-creations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: चलो चलो, दीपावली आ गई है। शिव शक्ति कल्चरल एंड एजुकेशन सिटी ऑफ मॉडर्न डे एसोसिएशन इन कॉरपोरेशन पेश करते हैं दीपावली उत्सव 2026 फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। सैटरडे 24 अक्टूबर को स्टॉल्स ओपन होंगे फ्रॉम 3 PM और फॉर्मल प्रोग्राम शुरू होगा फ्रॉम 7 PM एट पाइन रिवर स्टेट हाई स्कूल ऑडिटोरियम, ग्राहम्स फ्रंट असेंबली हॉल, स्ट्रैट पाइन। ध्यान रहे, एंट्री होगी वाया एश कोट। होंगे बहुत सारे स्टॉल्स जैसे हिना, रंगोली कॉम्पिटिशन, वेजिटेरियन क्यूजीन, किड्स ड्रेस अप कॉम्पिटिशन, कल्चरल एंड बॉलीवुड परफॉर्मेंसेज और नव दुर्गा ड्रामेटिक डांस, रैफल्स एंड डांस द नाइट अवे के साथ लाइव म्यूजिक भी। टिकट प्राइसेज आर $20 पर हेड, $50 पर फैमिली जिसमें कपल्स के साथ 2 किड्स अंडर 16 इयर्स आर इंक्लूडेड और किड्स अंडर 12 यस होंगे फ्री। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नीलिमा ऑन 0405-409-156, आई रिपीट 0405-409-156 या आप ब्रिस्वानी की ऑफिशियल वेबसाइट www.briswani.com पर इवेंट सेक्शन में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। आइए मिलकर दिवाली का फेस्टिवल मनाएं। दीपावली उत्सव 2026 सैटरडे 24 अक्टूबर 2026, इवेंट प्राउडली सपोर्टेड बाय द सिटी ऑफ मॉर्टन बे।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435, याद रहे 0400664435, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
5: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
4: अच्छा वो क्या?
5: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
4: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
5: अरे रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
8: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
10: नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है. ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ. ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ. ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ.

Hello friends, Queensland Fiji Football Association's prestigious Nil Tech QIDC 2026 hone ja raha hai from Wednesday 21st October to Sunday 25th October at the prestigious Olympic Football Club. पहली बार ब्रिस्बेन नसीनू होंगे QFFA फैमिली का हिस्सा, साथ ही देखने आ रहे हैं सुवा, लंबासा, नैंडी, लोटोका, बा, टावुआ, रेवा, नांड्रोगा एंड रा। खाने में होगी द फेमस बटर चिकन डक करी, पुलाव और माउथ वाटरिंग फिजी स्टाइल बारबेक्यू। अरे अरे, हम आइस ब्लॉक्स को कैसे भूल सकते हैं। तो आ जाओ मैदान में और अपनी फिजी कम्युनिटी के साथ गेम्स और खाने का लुत्फ उठाओ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें चेयरपर्सन लॉरेंस on 0407-764-272 या सेक्रेटरी रे अली on 0413-868-240 या फिर प्रेसिडेंट जितेंद्र प्रसाद on 0402-422-777।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो।

जान पहचान हो जीना आसान हो, जान पहचान हो जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ नाम तो बताओ, जान पहचान हो जीना आसान।

0: Hello friends, Queensland Fiji Football Association's prestigious Nil Tech QIDC 2026 hone ja raha hai from Wednesday 21st October to Sunday 25th October at the prestigious Olympic Football Club. पहली बार ब्रिस्बेन नसीनू होंगे QFFA फैमिली का हिस्सा, साथ ही देखने आ रहे हैं सुवा, लंबासा, नैंडी, लोटोका, बा, टावुआ, रेवा, नांड्रोगा एंड रा। खाने में होगी द फेमस बटर चिकन डक करी, पुलाव और माउथ वाटरिंग फिजी स्टाइल बारबेक्यू। अरे अरे, हम आइस ब्लॉक्स को कैसे भूल सकते हैं। तो आ जाओ मैदान में और अपनी फिजी कम्युनिटी के साथ गेम्स और खाने का लुत्फ उठाओ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें चेयरपर्सन लॉरेंस on 0407-764-272 या सेक्रेटरी रे अली on 0413-868-240 या फिर प्रेसिडेंट जितेंद्र प्रसाद on 0402-422-777।
1: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार. हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं.
3: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से.
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है.
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो.
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी.
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है. भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801. प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई.
4: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अगे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन, जो के अगे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां, इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथोराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शांडिलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शांडिलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premierTickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ, ताजे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो, बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार

0: दिवाली का त्योहार आ गया है दोस्तों, श्री सनातन धर्म हिंदू एसोसिएशन ऑफ क्वींसलैंड इंक ले आए हैं एनुअल दिवाली मेला सैटरडे 24th October 2026 फ्रॉम 4 PM। $15 पर पर्सन है एंट्री फी और चिल्ड्रन अंडर 12 इयर्स फ्री। वेजिटेरियन डिनर इंक्लूडेड एट सनातन सेंटर, 550 वेम्बले रोड, बेरनबाग, क्वींसलैंड 4117। एंजॉय कीजिए स्टॉल्स, फ्री किड्स क्राफ्ट एक्टिविटीज, कल्चरल परफॉर्मेंसेज, हिना और दिया लाइटिंग सेरेमनी भी। और जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट कोऑर्डिनेटर अशोक प्रसाद ऑन 0419334418 या फिर सेक्रेटरी राजेंद्र प्रसाद ऑन 0410454649। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स का जश्न मनाइए पूरी फैमिली और अपने कम्युनिटी के साथ। लाइट्स यूनाइट अस ऑल।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहां से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहां अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: At Shop 9B, Sunnybank Hills Shopping Town, corner of Kurlam and 661 Crompton Road, Sunnybank Hills, Queensland 4109. For all your jewelry needs, contact 3273-7365. That's 3273-7365. Or email princejewelers@bigpond.com. Family business built on trust.

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: चलो चलो, दीपावली आ गई है। शिव शक्ति कल्चरल एंड एजुकेशन सिटी ऑफ मॉडर्न डे एसोसिएशन इन कॉर्पोरेशन पेश करते हैं दीपावली उत्सव 2026 फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। सैटरडे 24 अक्टूबर को स्टॉल्स ओपन होंगे फ्रॉम 3 PM और फॉर्मल प्रोग्राम शुरू होगा फ्रॉम 7 PM एट पाइन रिवर स्टेट हाई स्कूल ऑडिटोरियम, ग्राहम स्प्रॉट असेंबली हॉल, स्ट्रैट पाइन। ध्यान रहे, एंट्री होगी वाया एश कोट। होंगे बहुत सारे स्टॉल्स जैसे हिना, रंगोली कॉम्पिटिशन, वेजिटेरियन क्यूजीन, किड्स ड्रेस अप कॉम्पिटिशन, कल्चरल एंड बॉलीवुड परफॉर्मेंसेज और नव दुर्गा ड्रामेटिक डांस, रैफल्स एंड डांस द नाइट अवे के साथ लाइव म्यूजिक भी। टिकट प्राइजेस आर $20 पर हेड, $50 पर फैमिली जिसमें कपल्स के साथ 2 किड्स अंडर 16 इयर्स आर इंक्लूडेड और किड्स अंडर 12 यस होंगे फ्री। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नीलिमा ऑन 0405-409-156, आई रिपीट 0405-409-156 या आप ब्रिस्वानी की ऑफिशियल वेबसाइट www.briswani.com पर इवेंट सेक्शन में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। आइए मिलकर दिवाली का फेस्टिवल मनाएं। दीपावली उत्सव 2026 सैटरडे 24 अक्टूबर 2026 इवेंट प्राउडली सपोर्टेड बाय द सिटी ऑफ मॉर्टन बे।

0: suku, suku.
1: Ay, ay, ya, karun mein kya suku, suku. Ay, ay.

0: तुम्हारे साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
5: अच्छा, वो क्या?
4: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
5: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
4: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Madhvi from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
8: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
10: नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है. ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ. ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ. ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ.

दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं। यार तुम कहो तो आज इसे एक नाम दो।

0: का मुझ पे असर, मैं दुनिया से बेखबर चलता हूँ अपनी डगर, मंजिल है मेरी प्यार।
1: सुकू सुकू
0: अय्या करूँ मैं क्या, सुकू सुकू खो गया दिल मेरा, सुकू सुकू

Hello friends, Queensland Fiji Football Association's prestigious NIL Tech QIDC 2026 hone ja raha hai from Wednesday 21st October to Sunday 25th October at the prestigious Olympic Football Club. पहली बार ब्रिस्बेन नसीनू होंगे QFFA फैमिली का हिस्सा, साथ ही देखने आ रहे हैं सुवा, लंबासा, नैंडी, लोटोका, बा, टावुआ, रेवा, नांड्रोगा एंड रा। खाने में होगी द फेमस बटर चिकन डक करी, पुलाव और माउथ वाटरिंग फिजी स्टाइल बारबेक्यू। अरे अरे, हम आइस ब्लॉक्स को कैसे भूल सकते हैं। तो आ जाओ मैदान में और अपनी फिजी कम्युनिटी के साथ गेम्स और खाने का लुत्फ उठाओ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें चेयरपर्सन लॉरेंस on 0407-764-272 या सेक्रेटरी रे अली on 0413-868-240 या फिर प्रेसिडेंट जितेंद्र प्रसाद on 0402-422-777।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen सब्जी from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
1: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.

0: Hello friends, Queensland Fiji Football Association's prestigious NIL Tech QIDC 2026 hone ja raha hai from Wednesday 21st October to Sunday 25th October at the prestigious Olympic Football Club. पहली बार ब्रिस्बेन नसीनू होंगे QFFA फैमिली का हिस्सा, साथ ही देखने आ रहे हैं सुवा, लंबासा, नैंडी, लोटोका, बा, टावुआ, रेवा, नांद्रोगा एंड रा। खाने में होगी द फेमस बटर चिकन डक करी, पुलाव और माउथ वाटरिंग फिजी स्टाइल बारबेक्यू। अरे अरे, हम आइस ब्लॉक्स को कैसे भूल सकते हैं। तो आ जाओ मैदान में और अपनी फिजी कम्युनिटी के साथ गेम्स और खाने का लुत्फ उठाओ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें चेयरपर्सन लॉरेंस on 0407-764-272 या सेक्रेटरी रे अली on 0413-868-240 या फिर प्रेसिडेंट जितेंद्र प्रसाद on 0402-422-777।
1: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। इह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
2: कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाओं में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर। मैं जानता हूं मेरी हम नफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
2: दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं। यार तुम कहो तो आज इसे एक नाम दूं।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 35 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 35, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
2: कह दूं तुम्हें
3: हाँ
2: या चुप रहूं
3: ना,
2: दिल में मेरे आज क्या है
3: क्या है?

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार. हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं.
3: तो ओमसॉक से बात कर. इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से.
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है.
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो.
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी.
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है. भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801. प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई.
4: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी.

क्योंकि वीरों के भी शिरोमणि सरदार खड़े थे, गुरु द्रोण दादा भीष्म कृपाचार्य खड़े थे, लड़ने के लिए सब कोई तैयार खड़े थे, पर रणभूमि में तो अपने परिवार खड़े थे। इन सब को देख अर्जुन का दिल दहल गया, फिर हाय उसके मुंह से उस दम निकल गया, इन गुरुजनों पे कैसे मैं वार करूंगा, किस किस का समर भूमि में संहार करूंगा, कांधे से तीर

मुझको ना चाहिए इस कुल कलंक से, प्रभु मुझको बचाइए। ये जर जमीन मुझको सुवर्ण ना चाहिए, जो कुल का नाश

0: बोले श्री कृष्ण अर्जुन से, ए पारथ सुनो,
1: ए पारथ,
0: बोले श्री

जाओगे तुम जो समर भूमि से, सारी दुनिया हंसेगी तेरे नाम पर। लौट जाओगे घर तुम समर भूमि से, सारी दुनिया

वीर माता से पाया है तुमने जन्म, तू उसी माता कुंती का रख ले भरम। अरे वीर माता से पाया है तुमने जन्म, तू उसी माता कुंती का रख ले भरम।

जिसको कहता है तू मेरा परिवार है, वो सभी तुमसे लड़ने को तैयार है। जिसको कहता है, अरे जिसको कहता है तू मेरा परिवार है, वो सभी

जग में सम्राट कहलाएगा, मर गया रण में तो स्वर्ग में जाएगा। जीत कर जग में तू सम्राट कहलाएगा और मर गया रण

साथ जब तक हूँ मैं तू हार सकता नहीं, कोई रण में तुम्हें मार सकता नहीं। साथ जब तक हूँ मैं तेरे तू हार सकता नहीं, और कोई रण

अर्जुन, कर्म कर, कर्म शर्मा ही प्रधान है। अर्जुन, कर्म कर, कर्म शर्मा ही प्रधान है। कर्म ही लक्ष्मी और कर्ण भगवान है। कर्म कर, कर्म शर्मा ही प्रधान है। कर्म ही लक्ष्मी और कर्ण भगवान है।

जीवन बहुत अनमोल है ये जीवन, और इस जीवन की सच्चाई को ढूंढने में, यानी हम क्या हैं, क्यों हैं और कहां से आए हैं, ये जानने में हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है। हम इस सफर में, जीवन आधार में, अपनी जिंदगी के पर्पस को ढूंढने की ही कोशिश कर रहे हैं, शायद मिल जाए हमें। और ये पर्पस जो है, ये किसी जाति धर्म में नहीं बदलता, ये पर्पस जीवन का पर्पस कि आप इस दुनिया में क्यों हैं, ये एक ऐसा पर्पस है जो हर मनुष्य के मन में है, ये एक ऐसा सवाल है जो हर मनुष्य के मन में है, अगर वो अपनी खोज में है तो अगर आप भी अपनी खोज में निकल पड़े हैं तो बस हमें सुनते रहिए रेडियो प्रस्थानी पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ जानने और समझने को आपको मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सताक्षी आपके साथ, और जीवन आधार का ये सफर इस अगले गीत के साथ आगे बढ़ेगा। सुनते रहिए रेडियो प्रस्थानी।

एक बार फिर से आप हैं सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर सुबह के हमारे आत्मा को जगाते और मन को शुद्ध करते सफर जीवन आधार में, और इस सफर में आपका साथ कुछ ऐसे गानों के साथ आज मैं दे रही हूँ जो गाने मन को, तन को और बुद्धि को भी शुद्ध करते हैं। आपको किसी जाति या धर्म से नहीं जोड़ते, आपको इंसानियत से जोड़ते हैं और इंसान बनाते हैं। आपको जीने की सही वजह बताते हैं और जीने की राह दिखाते हैं। अभी एक ऐसे ही गीत के साथ बढ़ेंगे हमारे जीवन आधार के सफर में आगे। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी और रहिए सताक्षी के साथ।

अक्सर श्रोताओं, आप कदम उठाने से डरते हैं, एक्शन लेने से डरते हैं, यानी क्या करें क्या ना करें ये सोचकर मन अक्सर घबरा जाता है। पता नहीं आप जो कर रहे हैं उसमें वो ऊपर वाला आपका साथ देगा या नहीं, पता नहीं आपने जो चाहा है वो आपको मिलेगा नहीं, या आपने सही चाहा है या गलत चाहा है। अक्सर मन इस बात के बीच में विचलित होता रहता है। लेकिन अगर एक बार ठान लिया है कि ये करना ही करना है, अगर एक बार मन ने तय कर लिया है कि ये राह अपनानी ही अपनानी है, तो भला मन को विचलित क्यों होने देना। फिर तो जो ठान लिया सो ठान लिया, जब कदम उठा लिया तो रास्ते की परवाह क्यों करनी। फिर तो आपका जो पैशन है, आपकी जो चाहत है, वो आपको आपके लक्ष्य तक ले ही जाएगी, है ना। तो चलिए इसी बात पर आपके लक्ष्य के नाम सुनते हैं ये अगला गीत। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी पर जीवन आधार।

जीवन आधार। जी हाँ श्रोताओं, यही सफर इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो प्रसवानी 1701 एम पर सताक्षी के साथ। जीवन आधार हमारा वो सफर है जहाँ पर आप जीने की सही वजह ढूंढ पाते हैं, अपने जीवन का डायरेक्शन ढूंढ पाते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा जो चीज हमें परेशान करती है वो ये कि हम इस पृथ्वी पे आखिर हैं क्यों, यानी हम क्यों हैं यहाँ, हमें क्या करना है। तो बस उसी जीवन को ढूंढने की हमें कोशिश करते हैं जीवन आधार में, और ऐसी ही कोशिश आज एक बार फिर से हम यहाँ पर कर रहे हैं। आइए भी बढ़ते हैं आगे इसी सफर में इस अगले गीत के साथ। सुनते रहिए सताक्षी के साथ जीवन आधार।

भाग्य। कहते हैं जो भाग्य में एक दफा लिख जाए फिर वो कोई नहीं बदल सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपकी प्रार्थनाओं में वो शक्ति है जो शायद भाग्य का लिखा भी बदल सकती है। यूं ही नहीं कहते हैं कि सुबह उठकर सबसे पहले उस शक्ति का, उस ऊपर वाले का, उस परमात्मा का ध्यान करना चाहिए जो इस सृष्टि का रचयिता है, जो इस सृष्टि को चला रहा है। आप किसी भी पद पर हों, लेकिन आप ये तो मानेंगे ना कि कोई है जो इस सृष्टि का नायक है और हम सबकी बागडोर उसने अपने हाथ में थाम रखी है और वही भाग्य का रचयिता भी है। तो अगर वो आपसे प्रसन्न है तो भाग्य लिखा हुआ बदल भी सकता है। बस उस पर इतना विश्वास होना चाहिए कि वो आपका भाग्य बदल सकता है, क्योंकि जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक वो आपको मिलेगा नहीं। और एक बार वो आपको मिल गया फिर आपको वो भी मिलेगा जो आपके भाग्य में लिखा ही नहीं। सुनते रहिए रेडियो ब्रह्मवाणी, आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ जीवन आधार।

तो श्रोताओ, ये था जीवन का एक और सफर रेडियो प्रसवानी 1701 AM पर जीवन आधार। इस वक्त आप मेरे साथ सुन रहे थे। कल फिर से इसी सफर में आपसे फिर से मिलूंगी जीवन की कुछ बातों और जिंदगी की कुछ गहरी और बहुत गहरी सच्चाइयों को लेकर। लेकिन अब आज के सफर से इजाजत चाहती हूँ और इस वादे के साथ कि कल लौटूंगी और फिर से जीवन आधार में हम अपनी ही जिंदगी को खोजने का प्रयास करेंगे। आज के सफर से अब दीजिए विदा। नमस्कार।

वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्ते, अदाब, सत श्री अकाल जी मेरी ब्रिस्बेन फैमिली। जरा एक सेकंड के लिए भाई अपनी आंखें तो बंद करनी बनती है। हाँ जी आप ही को बोल रही हूँ। और इमेजिन कीजिए कि आज का दिन आपको एक ब्लैंक पेज की तरह मिला है। जी हाँ, कल क्या हुआ, किसने क्या कहा, क्या अचीव नहीं कर पाए, सबको फिलहाल दोस्तों साइड में रख दीजिए, बिकॉज दोस्तों टुडे माय ब्यूटीफुल पीपल यू हैव अनदर चांस। जी हाँ, और इसी ब्यूटीफुल थॉट के साथ वेलकम टू योर ट्यूसडे मॉर्निंग ऑन रेडियो प्रिस्वानी। मैं हूँ आपकी दोस्त होस्ट आरजे चानी जैन, आपकी मॉर्निंग कैंपेनियन। और आज के अगले एक घंटे तक आपके एनर्जी का फुल एंड फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे हाथ में है। अब ब्रिस्बेन में जो ऑलरेडी ऑफिस के लिए निकल चुके हैं, जो ट्रेडीज अपनी जो कहते हैं ना अर्ली शिफ्ट्स है उसके लिए रेडी हो रहे हैं, या फिर जो पेरेंट्स बच्चों के लंच बॉक्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, और जो अभी अभी भाई ब्लैंकेट के साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं कि उठूं या नहीं उठूं, भाई आपको छोड़ूं या नहीं, तो दोस्तों फिलहाल आप ब्लैंकेट को छोड़ दीजिए और बस रेडी हो जाइए, क्योंकि भाई ब्रिस्वानी में प्रोग्राम आ चुका है जाने का सफर। इस सफर को और भी खूबसूरत बनाने के लिए भाई आपको तो सुनना पड़ेगा ही ना। तो आइए फिर सुनते हैं, शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम के इस गीत के साथ ऑनली ऑन रेडियो प्रिस्वानी।

इस गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आपकी मॉर्निंग का भाई सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, जल्दी जल्दी से मुझे बताइए। चाय, कॉफी, मॉर्निंग वॉक, भाई ये तो सबके कहते हैं ना डिक्शनरी में या फिर शेड्यूल में होता ही है, लेकिन दोस्तों सच सच बताना, फोन चेक करने वालों में कितने ऐसे लोग हैं भाई जो सिर्फ टाइम देखने के लिए फोन उठाते हैं और फिर 20 मिनट बाद याद आता है कि भाई टाइम तो अभी देखा ही नहीं, फिर क्या

इसी के साथ आइए दोस्तों जान लेते हैं भाई ब्रिस्बेन वेदर अपडेट। साउथ ईस्ट क्वींसलैंड में थंडरस्टॉर्म्स की पॉसिबिलिटी जो है वो बनी हुई है और वीक के आगे बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर्स में नोटिसेबल ड्रॉप जो है वो फोरकास्ट किया गया है। कुछ एरियाज में रेनफॉल काफी अनइवन हो सकते हैं। सो ऑलराइट ब्रिस्बेन, अब बात करते हैं आपके वेदर की। जी हाँ, बिकॉज घर से निकलने से पहले भाई वेदर चेक करना इज ऑलवेज अ स्मार्ट आइडिया। साउथ ईस्ट क्वींसलैंड में इस वीक वेदर थोड़ा सा भी अनप्रिडिक्टेबल जो है वो रह सकता है। थंडरस्टॉर्म्स और कुछ एरियाज में रेनफॉल की जो पॉसिबिलिटी है वो बनी हुई है। वीक के मिडल से साउथली जो कह सकते हैं चेंज, उनके साथ साथ टेम्परेचर्स भी नीचे आ सकता है। तो मेरी एडवाइस यही है कि अगर आप वर्क के लिए ड्राइव कर रहे हैं, आउटडोर जॉब पर जा रहे हैं या फिर बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के लिए निकले हैं, तो निकलने से पहले एक बार लेटेस्ट लोकल फोरकास्ट जरूर चेक कर लेना। और अगर बारिश हो तो रोड्स पर भी एक्स्ट्रा केयर जरूर रखेगा। रिमेम्बर दोस्तों, ऑफिस पहुंचने में 5 मिनट लेट होना इज बेटर देन ड्राइविंग अनसेफली टू सेव 5 मिनट्स, है ना। सो वेदर के साथ साथ अपडेटेड रहने के लिए ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी का जो लेटेस्ट फोकस्ट है वो जरूर चेक कर लीजिएगा। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू व्हाट्स हैपनिंग अराउंड ऑस्ट्रेलिया, लेकिन उसे ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्बेन

0: वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिसवानी में सुब भाई। अब एक ऐसी न्यूज आ रही है जो म्यूजिक लवर्स को ना एक्साइट कर सकती है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलियन रॉक बैंड पाउडर फिंगर के फैंस के लिए 2027 में एक स्पेशल म्यूजिकल रीयूनियन का जो प्लान है वो दिख रहा है भाई। बैंड रिपोर्टेडली अगर बात करिए तो ऑस्ट्रेलिया के 6 सिटीज में 18 शोज करेगा। अब जो लोग कहते हैं ना कि कुछ सॉन्ग सिर्फ और सिर्फ मतलब सुने जाते हैं या सुने नहीं जाते हैं, उनके साथ भी मेमोरीज जुड़ी होती है, उनके लिए ऐसे रीयूनियंस बहुत ही स्पेशल होता है। एक पुराना सॉन्ग, एक फैमिलियर वॉइस और अचानक से आपको याद आ जाते हैं वो कॉलेज का टाइम, वो रोड ट्रिप्स या फिर वो दोस्त जिसके साथ आपने गाने गाए थे, है ना। सो टेल मी ब्रिस्बेन, अगर आपको किसी भी सिंगर या बैंड का जो लाइव कॉन्सर्ट है वो अटेंड करने का चांस मिल जाए तो आप किसको चूज करेंगे भाई? आपका फेवरेट आर्टिस्ट आखिर कौन है? कीप लिसनिंग टू रेडियो ब्रिस्बेन। चलिए फिर आइए बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों कॉन्सर्ट डेट्स और टिकट डिटेल्स अनाउंस करने से पहले दोस्तों ऑफिशियली अपडेट्स वेरीफाई जरूर जरूर जरूर करें। आइए फिर इसी के साथ सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑन योर रेडियो ब्रिस्बेन।
1: Aisha!

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिस्वानी में। तो चलिए जी, अब टाइम है भाई थोड़ा सा ग्लैमर, थोड़ा सा ड्रामा और थोड़ा सा फिल्मी गॉसिप का। सो वेलकम टू ब्रिस्वानी का फिल्मी तड़का। सबसे पहले बात करते हैं भाई बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की। जी हाँ, 11 अक्टूबर को भाई बिग बी ने अपने 84th बर्थडे सेलिब्रेट किया था और इंडस्ट्री के कई सेलिब्रिटीज ने भी उन्हें विश किया था। जी हाँ, सोचिए डिगेट से एक ही पर्सनालिटी जनरेशन को भाई एंटरटेन कर रही है भाई। दैट्स व्हाट वी कॉल अ ट्रू स्क्रीन लेजेंड। जी हाँ, और अब एक्शन लवर्स के लिए भी एक इंटरेस्टिंग अपडेट है भाई। विद्युत जामवाल जो है वो अपने हॉलीवुड डेब्यूट स्ट्रीट फाइटर को लेकर न्यूज में है भाई। उन्होंने इंडियन और हॉलीवुड एक्शन इंडस्ट्रीज के बीच डिफरेंसेस पर बात करते हुए कहा कि सिर्फ बड़ा बजट होने से फिल्म सक्सेसफुल नहीं होती, प्लानिंग, प्रोफेशनलिज्म और भाई डिसिप्लिन भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। और ऑनेस्टली दोस्तों, ये बात सिर्फ फिल्म्स पर नहीं भाई, लाइफ पर भी अप्लाई होती है। टैलेंट जरूरी है, लेकिन टैलेंट के साथ साथ प्रिपरेशन हो तो रिजल्ट्स और भी बेटर हो सकते हैं। सो दोस्तों, बात करेंगे थोड़ी देर बाद और भी बहुत सारे, लेकिन इस गीत के बाद सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।

स्वागत है एक बार फिर से रेडियो ब्रिजवानी में। सो दोस्तों चलिए फिर लेट्स टेक अ लिटिल ब्रेक फ्रॉम हेडलाइंस एंड एंटरटेनमेंट। सो आई वांट टू आस्क यू समथिंग दोस्तों, क्या कभी आपने देखा है कि सबकी लाइफ या फिर सबके थॉट्स जो है वो अलग अलग है, या फिर सब ये सोचते हैं कि यार इसकी लाइफ जो है कितनी सॉर्टेड है, काश हमारी भी होती। होता है ना ऐसा, हम ही सोचते हैं किसी की लाइफ को देखकर। सोशल मीडिया की बात करें तो वहां पर किसी की हॉलीडेज पिक्चर अगर हम देख लेते हैं, किसी की न्यू कार देख लेते हैं, या फिर किसी का ब्यूटीफुल घर देख लेते हैं, और किसी की करियर सक्सेस देखकर हम ना कभी कभी अपने लाइफ को दोस्तों जज करने लगते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, एक बात याद रखिए, आप किसी और की लाइफ का जो हाईलाइट रील है ना वो देख रहे हैं, उनकी पूरी स्टोरी नहीं। हर इंसान की जर्नी हमेशा बताती हूँ अलग अलग होती है। किसी को सक्सेस जल्दी मिल जाती है, किसी को थोड़ी लेट लगती है, और किसी को तो इवन बहुत बहुत बहुत टाइम बाद मिल जाती है, उसने पूरी जवानी जो है ना खत्म कर लेती है अपनी। जी हाँ, कोई 25 की उम्र में अपने ड्रीम्स को अचीव करता है, इवन कोई 40 की एज में अपनी लाइफ का नया चैप्टर शुरू करता है, और दोनों बिल्कुल ठीक है दोस्तों। हमारी जर्नी लेट नहीं है सिर्फ इसीलिए क्योंकि किसी और की जर्नी हमसे पहले शुरू हो गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कभी भी सक्सेस होंगे ही नहीं। सो टुडे अपनी एनर्जी जो कंपैरिजन है उसमें नहीं, कम से कम इम्प्रूवमेंट में जरूर लगाइए। कल से थोड़ा बेटर बनना है, किसी और से बेटर नहीं दोस्तों। दिस इज योर ट्यूसडे रिमाइंडर फ्रॉम रेडियो ब्रिजवानी। यू ऑल आर अलाउड टू ग्रो टू योर ओन पेस। जी हाँ, आइए फिर इस एक साथ सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

हाँ जी, तो दोस्तों इसी के साथ हम पहुंच गए हैं अपने मॉर्निंग शो के फाइनल मोमेंट में। बताने की जरूरत नहीं, आप समझ चुके हैं। आई होप आज की सुबह आपके फेस पर एक स्माइल लाई होगी। मैंने कोशिश की होगी आपको कुछ नया सुनने को मिला होगा और शायद एक छोटा सा थॉट आपके साथ जो है वो रह गया होगा। सो याद रखिए दोस्तों, आपका पूरा दिन आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आप उस दिन को किस एटीट्यूड के साथ फेस करते हैं उसमें आपका रोल जरूर होता है। सो बी काइंड टू योरसेल्फ, बी काइंड टू अदर्स, और अपनी हैप्पीनेस को हमेशा दोस्तों किसी परफेक्ट मोमेंट के आने तक पोस्टपोन मत कीजिए भाई। आज के छोटे मोमेंट्स में भी खुशी ढूंढिए। सो मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजी चांदनी जैन, और आप सभी सुन रहे थे रेडियो ब्रिस्वानी में प्रोग्राम चांदनी का सफर। सो रेडियो ब्रिस्वानी पर बने रहिए, अपने फेवरेट सॉन्ग्स एंजॉय कीजिए और अपने ट्यूसडे को बनाइए थोड़ा सा ब्राइटर, थोड़ा सा हैप्पियर और अ लिटिल मोर ब्यूटीफुल। सो ड्राइव सेफ, वर्क सेफ एंड अपना ख्याल रखिए। सो वंस अगेन अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ब्रिस्बेन एंड हैव अ वंडरफुल ट्यूसडे एवरीवन। सी यू अगेन, सेम रेडियो, मोर म्यूजिक, मोर स्टोरीज एंड लॉट्स ऑफ पॉजिटिव वाइब्स। टेक केयर, बाय बाय।

साक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो प्रसवानी 1701 AM। आइए सुनते हैं हफ्ते की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्थ को मिला अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। मैक्रो इकोनॉमिक्स में योगदान के लिए हुए सम्मानित। अमेरिकी अर्थशास्त्रियों रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्थ को 2026 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ने स्टॉकहोम में दोनों अर्थशास्त्रियों को मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टेबलाइजेशन के माइक्रो इकोनॉमिक्स आधारों पर उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया है। भारत में होने वाली बैठक में शामिल नहीं होंगे बांग्लादेश के गृह मंत्री। भारत और बांग्लादेश के बीच जारी कूटनीतिक तनाव के बीच बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाहुद्दीन ने नई दिल्ली में आयोजित होने वाली बिम्सटेक गृह मंत्रियों की पहली बैठक से दूरी बना ली है। उनकी अनुपस्थिति में अब ढाका का प्रतिनिधित्व एक वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट के नेतृत्व वाला प्रतिनिधि मंडल करेगा। ये 2 दिवसीय बैठक शुरू हो चुकी है और आंतरिक मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के विचार विमर्श के साथ इसका शुभारम्भ किया गया है, जबकि आज यानी मंगलवार को गृह मंत्रियों की मुख्य बैठक तय है। दूसरा बंधुओं को पीड़ितों के परिजनों को 20-20 लाख रुपए देने का निर्देश। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब के मालिक सूरभ लूथरा और गौरव लूथरा को पिछले साल उत्तरी गोवा स्थित उनके प्रतिष्ठान में लगी भीषण आग में मारे गए 25 लोगों के परिजनों के लिए 20-20 लाख रुपए अंतरिम मुआवजे के तौर पर जमा करने का निर्देश दिया। जस्टिस वाल्मीकि मैनेजर्स व जस्टिस अमित जामसंडेकर की खंडपीठ ने उत्तरी गोवा के अरपोरा में दिसंबर 2025 में लगी आग के पीड़ितों को राहत देने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया है। राहुल गांधी के मार्च में बैटमैन की एंट्री खड़गे के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल। रिपीट, खड़गे के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल। सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस के दिल्ली चलो मार्च में एक अलग नजारा देखने को मिला। दरअसल इंडी गठबंधन के मार्च में अचानक बैटमैन की एंट्री हुई। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मार्च के दौरान लोगों को बैटमैन वाले मास्क बांटे। तथा ये मार्च सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निकाला गया, जहां प्रदर्शनकारी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। आइए जुड़ते हैं अब खेलों से और सुनते हैं खेल जगत से जुड़ी प्रमुख खबरें। स्टीफन फ्लेमिंग और ब्रेडन मैककुलम ने की अपनी सेना तैयार। साउदी पीटरसन समेत इंग्लैंड के कोचिंग स्टाफ में दिग्गजों की एंट्री। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने स्टीफन फ्लेमिंग और ब्रेडन मैककुलम के कोचिंग स्टाफ का ऐलान कर दिया है। फ्लेमिंग के साथ चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व गेंदबाजी कोच एरिक सिमंस की इंग्लैंड टीम में एंट्री हुई है। वहीं मैककुलम के साथ केविन पीटरसन और टिम साउदी जैसे दिग्गज भी जुड़े हैं। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो प्रसवानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: शांत मन मुश्किल को मिटाता नहीं, लेकिन सही अगला कदम जरूर दिखाता है। गुड मॉर्निंग ब्रिस्बेन, गुड मॉर्निंग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड।
1: नमस्ते, गुड मॉर्निंग। नमस्ते भाई जी।
0: नमस्ते,
1: हाउ आर यू?
0: आई एम फाइटिंग फिट।
1: फाइटिंग फिट।
0: कैन आई से समथिंग अबाउट माय पीरा? तो अपना साथी है, दुख सुख तो अपना
1: well,
0: साथी
1: है। Mine seemed to have went away.
0: You went away? Yeah. You know that a lot of people talk about ये ना लगाओ, क्या बोलते हैं, कोर्टिसोन वगैरह, this and that.
1: Why not?
0: भाई जो जिसके ऊपर बीतता है वही जानता है. And let me tell you, this was the second one I got this year. The first one didn't work.
1: Mm-hmm.
0: And my doctor said, well, let's give another try and then we'll discuss what we can do. So भगवान की दया से, नहीं कि मैं भगवान को याद नहीं करता हूँ दोस्तों, ये मत सोचो, मैं अपना मेरा तरीका भगवान को पास पहुंचने का कुछ और है, लेकिन फिर भी मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ लकड़ी है, वुड है, हाँ यह वुड है, टच वुड, इट इज वर्किंग एवरी डे,
1: एवरी डे
0: इट इज गेटिंग बेटर. बिकॉज आई कुड टेल द वे दिस गाय, हिज नेम इज मिस्टर सिंह, हु डिड दैट टू मी. The way he did it, that's the same way that was done on my shoulder, what, 16, 18 years ago, something like that. That has never come back, touch wood.
1: Wow.
0: And the way he did this one, and I saw it on the
1: screen
0: how he was going in. And but he did a wonderful job. So sometimes I think it's also how they administer it.
1: How they administer, I think. Yeah. And yes.
0: Yeah, so thank you, Lord.
1: And thank
0: मैंने
1: you,
0: सोचा
1: Mr.
0: मैं रेडियो में बोलूंगा तो यह वाइफ से आपके पास जल्दी पहुंचेगा मेरा. थैंक यू.
1: आई थिंक सो.
0: दोस्तों कैसे हैं आप सब? आप ठीक है? आप आज तो मंगलवार है ना. गर्मी शुरू.
1: Yep.
0: Was beautiful last night though.
1: I was gonna be too warm last night.
0: Were you?
1: Yeah.
0: Did you check your pressure and everything okay?
1: I didn't.
0: Okay.
1: My eyes closed so early last night. I think
0: ladies usually feel warmer than men do, you know that.
1: I think by 7-ish, just after 7, I could not keep my eyes open.
0: Well, यहाँ पर यहाँ पर गर्मी शुरू है दोस्तों, और मैं जानता हूँ your neck of woods में भी वहाँ पर शायद विंटर शुरू हो रहा होगा या हो गया होगा. I'm waiting for all those winter videos. I love winter. I love
1: all
0: snow.
1: That snow.
0: You know, I still love snow. Anyway. आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आज का जो वेदा है, वेदा पर कहा गया है, वी डाइग्रेस्ड अ लिटिल बिट, वेदा पर कहा गया है आज की शावर स्टॉर्म डेवलपिंग शावर्स 1 to 15 मिलीमीटर है अमिता, 20 and 31 रहेगा. आई थिंक इट माइट टर्न आउट टू बी अ बिट ऑफ अ मिजरेबल
1: मगी डे.
0: ओके, टुमारो शावर और टू 20 and 25 degrees रहेगा दोस्तों, 5 millimeter rain कहा गया है. Thursday को possible showers, 17 and 23 1 millimeter, और Friday को showers or 2, 17 and 22 5 millimeter कहा गया है. Saturday को shower or 2, 15 to 23 degrees रहेगा, bit of a cold day है Saturday, 6 millimeter, और Sunday को 16 and 23 रहेगा, 8 millimeters of rain. I love rain, you know, it's okay, once in a while it's good. मंडे को शावर्स और 2, 16 and 23 7 मिलीमीटर रेन रहेगा. सो दैट्स द रेन डिपार्टमेंट. और पैसिफिक मोटरवे हॉलन पार्क वेस्ट स्टेशनरी व्हीकल नो ब्लॉकेज साउथ बाउंड टुवर्ड्स मार्शल रोड. ठीक है, एंड दैट्स अबाउट इट एज फार एज वी कैन सी ओवर हियर. Okay, so what else?
1: Any Fiji news for us?
0: Okay. Fiji and Australia news, eh? Water rationing in Kandahar.

0: ना कहाँ है अभी आपने सुना रेडियो बिजवानी से, इस समय 7:45 बज गए हैं दोस्तों। और चलिए, जैसे मैंने पहले कहा था कि सुर के साथ हम हो जाएंगे, और मेरे साथ यहाँ पर ओम और रोहित है, और कुछ हम बातें करेंगे दोस्तों जो अपकमिंग शो के विषय में, ठीक है। तो चलिए, हेलो ओम एंड रोहित, चलो आप सभी का स्वागत है। हेलो हेलो हेलो, क्या हो गया? कैन यू हियर मी? वेट करना। हेलो हेलो ओम, कैन यू हियर मी? लगता है दोस्तों कुछ गड़बड़ी हो गया हमारा, अभी तो चल रहा था, क्या हो गया? खैर, ओके, होल्ड ऑन, इट्स हाउ कैन इट बी म्यूटेड, somebody's muted here. Hello? Okay. चलो कोशिश करते हैं दोस्तों, फिर से भी देखते हैं क्या हुआ यहाँ पर। और ये देख रहा है कि हम यहाँ पर किसी तरह से म्यूट हो गए हैं, लेकिन ओके, रोहित हैव यू, हेलो, ओके चलो दोस्तों, थोड़ी में फिर हम शुरू करेंगे, कॉल करेंगे, देखते हैं क्या होता है। ले लेते हैं कॉल को, ज्वाइन। हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो, व्हाट्स हैपनिंग हियर? हेलो, हाँ, कैन यू हियर मी ओम? माफी चाहता हूँ दोस्तों, कुछ हो गया है यहाँ, योर माइक्रोफोन इज म्यूटेड। या कैन यू हियर मी नाउ? हेलो,
1: यू पुट इट डाउन,
0: इट केम, व्हाट हैपेंड?
1: बट ही पुट इट डाउन, ही हर्ड हिम एंड देन ही पुट इट डाउन।
0: या हेलो, now we'll try it here now. Hello, Radio Biswani. Hello, Radio Biswani. Hello, Om, can you hear me? Okay, can you hear me?
2: I can hear you.
0: Okay. Hey, kabhi. Namaste, आप दोनों को, I'm very sorry, कुछ यहाँ पर technical error हो गया था. Anyway, we are back. हाँ, Om?
2: We are back. We are back with a bang, uncle. So obviously the reason आप लोग musical लोग हैं तो एक concert होने जा रहा है, बहुत ही खूबसूरत
0: जी,
2: Poly to Bridgey. It's a musical celebration जो कि 17 अक्टूबर शाम 6 बजे से लेकर 9:30 बजे होने जा रहा है Sandgate Town Hall में.
0: This coming is it Saturday?
2: This coming Saturday, uncle. Yes.
0: Yes. Okay. All right. Okay. तो कुछ बताइए शो के बारे में। आई नो इट्स अ वेरी हाई, क्या कहते हैं, यू गाइज डू लॉट ऑफ प्रिपरेशन फॉर दिस शो, और अच्छे अच्छे आपके गायक हैं इसमें, कुछ थोड़ा बताइए आप प्लीज।
2: जी बिल्कुल, अब सुर 420 एक म्यूजिकल बैंड है अंकल, और हमारे साथ रोहित भी शिरकत दे रहे हैं इस प्रोग्राम में अभी।
0: अच्छा जी,
2: तो रोहित आपका भी स्वागत है।
0: स्वागत है, नमस्ते रोहित, हाउ आर यू?
3: बिजवानी के सभी सब सुनने वालों को रोहित का प्यार भरा नमस्कार। तो हमने ये जो कॉन्सेप्ट है, हमने जो शुरू किया था जतीश अंकल, ये लोकल टैलेंट को प्रमोट करने के लिए हमने ये किया था। इट इज आवर ड्रीम दैट वी प्रमोट लोकल टैलेंट, जो नॉर्मली होता नहीं है। और हमारे अभी सभी जो सिंगर्स हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है इसमें, और विद इन अ मंथ जो शो है इतना अच्छा हमको रिस्पांस मिला है कि शो फुल हो गया है
0: जी।
3: सबके ब्लेसिंग्स, आपके ब्लेसिंग्स, ये जो भी हमको सुनते हैं, हमें जितनी भी ऑडियंस है उनकी ब्लेसिंग्स से ये हो गया है। और हम दोनों का ये एफर्ट है, हमारा ये एक ड्रीम है कि जितने भी सिंगर्स हैं इनको हम प्रमोट करके खुशियां ही खुशियां बांटे, सब लोग सुने और खुश रहे हैं। तो इसलिए हमने ये पूरा जो शो है वो ये किया। तो हम सोच रहे हैं कि बिकॉज आपने और रेडियो बिजवानी ने इतना हमको सपोर्ट किया है, तो क्यों ना हम ऐसा कुछ करें जस्ट एज अ स्मॉल टोकन ऑफ लव एंड गिविंग बैक टू रेडियो बिजवानी। कोई स्पेशल आपके जितने भी लिसनर्स हैं उनको हमारे शो में आने का हम न्योता दें
0: जी,
3: और हम कुछ सुने और यू नो
0: जी। थैंक यू सो मच। मुझे याद है कुछ कितना साल हो गया सुर को शुरू होते।
2: रेडियो बिजवानी के आशीर्वाद से ही हम लोगों ने पहला शो भी किया था। यू नो यू वर द बैकबोन ऑफ आवर शो ऑलवेज। आप हमेशा रहते हो साथ में, आपका आशीर्वाद हमेशा साथ में रहता है। तो इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं अंकल कि टिकट तो सोल्ड आउट हो गए हैं, बट वी डू हैव एन ऑप्शन ऑफ बालकनी व्यूइंग एंड लिसनिंग एज वेल। सो हम चाह रहे थे कि रेडियो बिजवानी के जो लिसनर्स हैं, जो लॉयल लिसनर्स हैं, जो जो बिजवानी का परिवार है, उनको कुछ टिकट हम चाहते हैं कि हम ऐसे ही एज ए टोकन ऑफ लव उनको दे दें।
0: क्या बात है, थैंक यू सो मच। तो ये टिकट कैसे दे सकते हैं इनको, हम हमारे जो फैमिली
2: जो लोग रेडियो ब्रिजवानी का नाम लेकर आएंगे उनको हम टिकट फ्री में देंगे।
0: अच्छा जी,
2: एट द डोर इटसेल्फ। अगर वो अपना नाम अगर आपको लिखवा दें या हमें हमें बता दें तो ज्यादा आसानी रहेगी, बट टिकट आर ऑलवेज लिमिटेड, यू नो वी कांट केटर टू मेनी पीपल। रोहित कितना टिकट देना है?
3: I think we have a block of 20 tickets
0: for Brisbane.
2: What I was thinking, Rohit, I was just talking to Uncle Jatish. So why 20? Let's give 30, man. Balcony mein jagah hai. We can accommodate 30 people.
0: Okay. Yes. Thank you.
3: But we'll be having a bunch of four. So I mean, you know, so that wo jitna bhi happiness hai sab mein bate, you know.
0: Okay. Thank you so much.
3: Maximum we have four.
0: थैंक यू सो मच। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो लिस्ट से जरूर आएंगे, क्योंकि एक दो है जो मुझसे पूछ चुके हैं, ओ यस अंकल कैन आई गेट अ फ्री टिकट। ये लोग थोड़ा अभी स्टूडेंट्स है, तो चलिए ये बड़ी अच्छी बात है।
2: That's totally understandable, uncle. Yeah, so that's the reason why wo balcony jo hai na specially dedicated to our family members, jo show jo sur 420 band members hain, jo musicians hain, unke liye hi wo balcony hai.
0: Achha,
2: to hum log ne socha ki wahan pe space hai, to why don't we give it to our radio Brisbane parivar ko bhi chah rahe hain ki wo bhi aake wahan baithe aur program ka lutf uthaye obviously.
0: Okay, thank you so much, much appreciated. Aise hum jaane nahi denge aapko. अब हमारे साथ SB बाला सुब्रमण्यम तो नहीं है, लेकिन शायद उनकी आवाज भी है साथ में, इसमें सुनने को मिलेगा आपको। और आप दोनों कुछ कुछ सुनाएंगे हमारे लिसनर्स को? ओ एम आई पुटिंग यू गाइज ऑन अ स्पॉट?
2: You always do that, uncle, and it's always a pleasure to be honest with you. So,
0: मैं उन्हीं के साथ करता हूँ जो मैं जानता हूँ कर सकेगा।
3: आपका प्यार है जो हमको ऑन द स्पॉट डालता है।
0: किसी को एक बार मैंने सुना, ये वाला सुन लो आप जाने से पहले, गाने से पहले, किसी को हमने एक बार नाम से मिस्टेक किया, आई थॉट इट वॉज वन ऑफ यू योर सिंगर्स, तो कुछ उनका प्रमोट करना था किया, तो मैंने सोचा था कि ये वही व्यक्ति है, तो मैंने इसको स्पॉट में डाल दिया कि आप एक गाना सुना दो। लेकिन शी डिड सिंग आई मीन एट लीस्ट आई एट लीस्ट गिव इट टू हर फॉर दैट। अच्छा तो हाँ सुना दो प्लीज कुछ अच्छा सा सुना दो,
2: बाला सुब्रमण्यम साहब का कोई अच्छा सा गाना सुना दें आप हमें
0: जी।
3: चलो कोशिश करता,
0: चलो दोनों से सुनेंगे।
2: हाँ हाँ बिल्कुल, रोहित शुरू करेंगे, मैं ज्वाइन कर लूंगा इनको।
3: ठीक है, उनका एक बहुत ही बढ़िया, मेरा एक वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग्स है एंड इट्स अ वेरी आइकॉनिक सॉन्ग, सो आई जस्ट ट्राई गणपति अप्पा मोरिया।
0: समझ जाए हेलो
2: क्या बात जी जी अंकल,
0: थोड़ा सा कट गया था यहाँ, थोड़ा सा फोन आप दूर रख कर गए, थोड़ा सा फोन दूर रख कर गए जी हाँ। तो एनीवे तो चलो ओम यू कैन गिव अस, बड़ा अच्छा था, थैंक यू सो मच, बट आई थिंक मे बी द लिसनर्स कुड नॉट लिसन टू द होल थिंग एज इट वाज कटिंग ऑफ,
2: आई थिंक दैट्स ओके, गो
0: दैट्स ओके।
2: कैन यू हियर मी नाउ?
0: या आई कैन हियर यू, या या
2: प्रोग्राम में अगर आएंगे तो जरूर
0: जरूर सुनेंगे जी हाँ जी हाँ।
2: प्लीज आप आए और अपना प्यार और आशीर्वाद बरकरार रखें हम पे, पिछले 5 सालों से आपकी आपका सहयोग मिल रहा है, तो इस बार भी हम चाह रहे हैं कि प्लीज डू कम अलोंग एंड एंजॉय द म्यूजिकल जर्नी विद अस।
0: अच्छा जाने से पहले ओम आप थोड़ा गा के सुनाइए, शायद आपका आ जाएगा, आई डोंट नो कुछ लाइन में होगा शायद, अगर नहीं तो फिर मैं बता दूंगा।
2: अच्छा आपने एस बी बालासुब्रमण्यम का जिक्र किया, मैं रोहित के सामने गाने की हिमाकत कर रहा हूँ रोहित जी, प्लीज
0: ओके।
2: एक गाना है सच मेरे यार है

0: यार मैंने साथ
1: वाह
0: दीजिएगा जरूर।
1: या
0: सत्रह अक्टूबर 17 अक्टूबर
1: ब्यूटीफुल।
0: की शाम 6 बजे से 9:30 बजे तक हमारा।
1: तो डोंट फॉरगेट, ठीक है दोस्तों, और आपको जाकर बोलना पड़ेगा रेडियो ब्रिजवानी, ठीक है,
0: हाँ जी बिल्कुल
1: और आपको साथ साथ में 1701 भी जोड़ना पड़ेगा, तब तो पता चलेगा ना।
0: यस 100%
1: हाँ
0: अंकल।
1: ओके
0: प्रॉब्ली अंकल वी विल प्रॉब्ली ड्रॉप बाय अगेन इफ नॉट टुमारो देन थर्सडे एंड
1: ऑल राइट
0: मे
1: ओके
0: बी सैटरडे ऑन सैटरडे विद परमा अंकल एज वेल।
1: या
0: सो
1: या
0: एटलीस्ट वी कीप दिस इंफॉर्मेशन गोइंग थ्रू। सो अच्छा रहेगा,
1: ओके ऑल
0: लोगों
1: राइट
0: का
1: या
0: कल रहेगा।
1: या या
0: ठीक है
1: देखिए
0: तो
1: दोस्तों, आपको चाहते हैं कि आप लोग जाए इसमें पार्ट ले, अगर फिर भी अगर आप लोकल आर्टिस्ट बनना चाहें आप कर सकते हैं। ये जो ब्रिजवानी का जो टिकट मिल रहा है दोस्तों, बिल्कुल मुफ्त में है, और दिस इज जस्ट गोज टू शो कि एक एनकरेजमेंट है आप लोगों के लिए कि जाकर इस म्यूजिकल में पार्ट ले, ठीक है। तो थैंक यू रोहित एंड
0: थैंक यू थैंक यू अंकल। आपने
1: ओके
0: बहुत बहुत धन्यवाद अंकल,
1: धन्यवाद, ओके
0: बहुत
1: थैंक यू,
0: बहुत धन्यवाद
1: थैंक यू
0: टू द
1: अंकल,
0: लिसनर्स एज वेल। थैंक यू
1: ओके थैंक यू,
0: थैंक
1: हैव अ
0: यू,
1: गुड डे,
0: बाय
1: यू
0: थैंक
1: टू,
0: यू
1: बाय।
0: बाय।
1: थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम रहा दोस्तों, लेकिन माफी चाहता हूँ, आज मालूम नहीं कोऑपरेट नहीं कर रहा है। ओके आगे चलते हैं, और कौन सा गाना था, कौन सा गीत था, ओके चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रेडियो बिजवानी आप सुन रहे हैं, आपकी अपनी पहचान, और यू प्ले समथिंग भी था।
2: Okay, here we go.

0: Okay. The federal government has announced $630 million to support pay rise in health, disability and community services. Funding will help charities and non-for-profit organizations delivering government programs meet higher wage costs following Fair Work Commission finding that this work has been undervalued. तो चलिए इसका मतलब यही है कि ऑस्ट्रेलिया में जो केयर वर्कर्स है ना दोस्तों, इनकी जो सैलरी बढ़ाने के लिए ये सरकार ने ऐसा किया है, $630 million की फंडिंग अनाउंस की है. ठीक है, ऑलराइट, सो दैट्स अ गुड न्यूज, एटलीस्ट
1: सम गुड न्यूज,
0: सम गुड न्यूज. ओके ओके
1: ओके
0: So they were cutting funds, but no.

0: और देखिए दोस्तों, सिडनी कॉस्मेटिक सर्जरी इवेंट जो था ये कैंसिल हो गया. साउथ कोरियन कंपनी हैज कैंसल्ड सिडनी इवेंट आफ्टर एबीसी क्वेश्चन्ड प्रमोशंस इन्वॉल्विंग डॉक्टर्स हु वर नॉट रजिस्टर्ड टू प्रैक्टिस इन ऑस्ट्रेलिया. ठीक है. और चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज डिजर्व अ वॉइस, फिजीज ह्यूमन राइट्स एंड एंटी डिस्क्रिमिनेशन कमीशन सेज इट्स स्टडी फाउंड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज आर ऑफन एक्सक्लूडेड फ्रॉम डिसीजन अफेक्टिंग देम. इट इज कॉलिंग फॉर बेटर कम्युनिकेशन सपोर्ट एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देयर ओन व्यूज एट होम, स्कूल एंड द कम्युनिटी. फुटबॉल फैन हेल्प चिल्ड्रन फाइटिंग कैंसर. Fiji Football Association has handed in Fijian dollars $51,574 to WOWS, Kids Fiji. The money came from setting aside $1 from each ticket sold at two major football tournaments. It will support children with cancer and their families. Kya baat hai na? Dekhi dosto, ek dollar chota lag sakta hai. लेकिन जब हजारों लोग साथ देते हैं ना, तो किसी परिवार के लिए ये बड़ा सहारा बन जाता है दोस्तों. तो देखिए, बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, एवरी ड्रॉप फिल्स
1: द बकेट.
0: सो चलिए, ऐसे ऐसे नेक काम लोग करते हैं, अभी भी ऐसे करना भी चाहिए. जो लेस फॉर्चुनेट है उनके लिए हमें कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए, थोड़ा कुछ निकाल कर देना चाहिए. अभी बड़ा गंभीर सवाल मैं कर सकता हूं आप लोगों से, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं करूंगा कि आप पैसा कहाँ दे सकते हैं, कहाँ देना आपके लिए अच्छा होता है. उतना ही कहूंगा, समझ गए मैं क्या कह रहा हूं. ऐसे बहुत से लोग हैं जो पैसा नीड करते हैं दोस्तों, अभी मेडिकली नीड करते हैं, और वहां पर पैसा देना बहुत जरूरी है. क्योंकि हम जहां कभी कभी ऐसा जगह पैसा दे देते हैं जहां पर कोई मदद किसी का नहीं हो पाता है. सोचिए जरा, अब समय आ गया है जब हम जमाना बहुत आगे चला गया है और हमको बहुत दूर तक सोचना पड़ेगा. अब पुरानी आदतों को थोड़ा हटाना पड़ेगा, क्योंकि आई थिंक एवरीबॉडी नीड्स ईच अदर नाउ मोर देन एवर टू हेल्प देम. ओके,
1: एंड इफ यू वांट टू पुट मनी इन द राइट प्लेस, यू कैन हेल्प सेव अ लाइफ.
0: यप.
1: You can actually attend this fundraising event.
0: Yeah.
1: On the 30th of October.
0: For the leukemia.
1: Now tomorrow we are going to interview Prerna, who organizes these fundraising events for Simply Human, which is a non-profit organization. So I've asked her to come in just after 7:30. So after we've done the birthday greetings.
0: Okay.
1: So we'll have her on air and she will give you more insight into this event. Please, we need the money desperately to help save lives.
0: Yes. जैसे भी आपने पहले सुना ना, थोड़ा थोड़ा करके जब हम देते हैं तो घड़ा भर जाता है दोस्तों. ऐसे बहुत से फैमिलीज हैं. मैं जानता हूँ बिजवानी एड फाउंडेशन एक टाइम बहुत कसरत से काम करते थे, लेकिन अब हम धीरे आस्ते आस्ते सब बूढ़े हो गए.
1: No. Even, I was very active in the community also.
0: Yeah.
1: And I've kind of slowed down as well. I'll just leave it to the younger people now, but support them as much as I can, in whichever way I can.
0: तो देखिए दोस्तों, अगर कोई है जो नीड करता है तो प्लीज let's help them out, right?
1: Absolutely.
0: Even if you give $10, $15, just to make sure. और आजकल साधन बहुत है. आजकल तो लोग, अब मैंने देखा है कि जो फिजी में जो पीड़ित लोग हैं आजकल इंडिया जाते हैं. And they get the very good care and much, much cheaper than, forget about Australia and New Zealand.
1: Right.
0: You can't do it here. Yeah, I don't know why, but it's very expensive. Yeah, well, maybe there are other reasons too, you know. Litigations and all those things, insurance cost. Yes, sab kaafi hota hai. Oh, wo zamana gaya jab doctor ghar ghar jaya karta tha bichara.
1: Yeah.
0: Wo zamana gaya.
1: House calls.
0: They used to keep and, mera jo pehla yahan doctor tha, he was like that, but he doesn't practice anymore. He used to keep in touch without even, you know, without even asking you to go. He used to go and visit my mom to make sure that she was okay.
1: Wow.
0: Aisa doctor bahut kam milta aajkal dosto.
1: Yeah, that's so true.
0: Okay, chalo aage badhte hain. Radio Bizwani aap sun rahe hain. Number hai 04. Shayad bahut der se aap intezaar kar rahe honge. कि मैं नंबर कब दूंगा, 04-3003-1701. अगर ओवरसीज से कॉल कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पर 617 है और लैंडलाइन है 3279-1701. चलिए अगला किस सुनते हैं दोस्तों, रेडियो मिज़बानी, आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान.

0: Well, okay, time we played a few ads, ठीक है, चलो थोड़ा एड हम सुन लेते हैं दोस्तों, और वापस आएंगे. रेडियो भिजवानी आप सुन रहे हैं, आपकी अपनी पहचान.
1: Hello friends, Queensland Fiji Football Association's prestigious Nil Tech QIDC 2026 hone ja raha hai from Wednesday 21st October to Sunday 25th October at the prestigious Olympic Football Club. पहली बार ब्रिस्बेन नसीनू होंगे QFFA फैमिली का हिस्सा. साथ ही देखने आ रहे हैं सुवा, लंबासा, नैंडी, लोटोका, बा, टावुआ, रेवा, नांद्रोगा एंड रा. खाने में होगी द फेमस बटर चिकन डक करी, पुलाव और माउथ वाटरिंग फिजी स्टाइल बारबेक्यू. अरे अरे, हम आइस ब्लॉक्स को कैसे भूल सकते हैं. तो आ जाओ मैदान में और अपनी फिजी कम्युनिटी के साथ गेम्स और खाने का लुत्फ उठाओ. ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें चेयरपर्सन लॉरेंस on 0407-764-272 या सेक्रेटरी रे अली on 0413-868-240 या फिर प्रेसिडेंट जितेंद्र प्रसाद on 0402-422-777.

0: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: दिवाली का त्योहार आ गया है दोस्तों। श्री सनातन धर्म हिंदू एसोसिएशन ऑफ क्वींसलैंड इंक ले आए हैं एनुअल दिवाली मेला, सैटरडे 24 अक्टूबर 2026, फ्रॉम 4 PM। $15 पर पर्सन है एंट्री फी और चिल्ड्रन अंडर 12 इयर्स फ्री। वेजिटेरियन डिनर इंक्लूडेड एट सनातन सेंटर, 550 वेम्बले रोड, बेरनबाग, क्वींसलैंड 4117। एंजॉय कीजिए स्टॉल्स, फ्री किड्स क्राफ्ट एक्टिविटीज, कल्चरल परफॉर्मेंसेज, हिना और दिया लाइटिंग सेरेमनी भी। और जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट कोऑर्डिनेटर अशोक प्रसाद ऑन 0419334418 या फिर सेक्रेटरी राजेंद्र प्रसाद ऑन 0410454649। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स का जश्न मनाइए पूरी फैमिली और अपने कम्युनिटी के साथ। लाइट्स यूनाइट अस ऑल।
3: जी हाँ दोस्तों, रेडियो बिजवानी आप सुन रहे हैं, आपकी अपनी पहचान, और नंबर है 04300031701। याद रखिएगा, सताक्षी है इस कार्यक्रम के बाद में, और 11 बजे से संदेश है पंजाबी प्रोग्राम के साथ, 3 बजे से निविया के साथ आप हो जाएंगे, तो कार्यक्रम जरूर सुनिएगा दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं।
4: I want to say a special good morning to Shobha ji.
3: Yeah, Shobha ji. Shobha is...
4: She's listening silently.
3: She's listening. She's listening. Yeah. Shobha ji doesn't miss our program. Thank you, Shobha ji.

0: Oh
1: एनीवे समथिंग हंग अप. ओके रेडियो बिजवानी आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान. विल बी राइट बैक फॉर ऑल आवर इंटरनेट लिसनर बट दे कांट हियर मी व्हाट आई
0: दे
1: एम सेइंग.
0: कांट हियर अस.
1: ओके चलो प्ले समथिंग प्लीज व्हाइल आई गेट दिस थिंग सॉर्टेड आउट. थैंक यू सो मच.

0: Okay, dosto. I'm sorry about the dropout, but anyway, I think you'd be probably आपका जो क्वालिटी साउंड क्वालिटी और अच्छा हुआ होगा दोस्तों. बट एनीवे, लेट मी नो. ओके, जो लोग इंटरनेट से सुन रहे हैं उनके लिए रेडियो पिजवानी आप सुन रहे हैं दोस्तों. और चलो सुनते हैं अगला गीत. सॉरी, आई बीन बिजी अमिता.
1: That's okay. I know you got to do all the technical stuff. I can just sit here
0: and play music.
1: Oh, enjoy myself, of course.

याद आ गया है, इसी तरह एक गाना चल रहा था कहीं पे, तो एक शेर पे मुकर्रब की आवाज आई तो वो शेर दोबारा पढ़ दिया गया। उसके बाद फिर मुकर्रब की आवाज आई तो गाने वाले ने फिर दोबारा शेर पढ़ा। उसके बाद फिर मुकर्रब की आवाज आई तो गाने वाले ने तीसरी दफा फिर पढ़ा, लेकिन फिर मुकर्रब की आवाज आई तो गाने वाला बोलता है कि साहब मुझे अगला शेर भी पढ़ने दीजिए अभी। तो ऑडियंस में से आवाज आती है कि जब तक आप इसको सुर में नहीं पढ़ेंगे हम मुकर्रर ही बोलते रहेंगे।

0: और एक बहुत प्यारी गजल सुनी आपने दोस्तों, रेडियो मिज़बानी से आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। और अब मेरे ख्याल से यहाँ से हम जाने वाले हैं इस प्रोग्राम से, और आप सभी ने मेरा साथ दिया, थैंक यू सो मच। और हम मिलेंगे
1: कल,
0: ठीक
1: जी
0: है?
1: जी हाँ,
0: तो
1: वी विल डू आवर वेरी बेस्ट टू बी हियर, come yes. hell or high water. I think it's going to storm this afternoon.
0: Yeah, that's what's predicted, eh?
1: Yeah.
0: So,
1: why did I say that, come hell or high water?
0: Hail or, what do you call it?
1: Storms, yeah. Floods. No, I don't think, I think it's just going to storm because of the heat. And that's about it. Yeah. So, we will do our very best to be here tomorrow morning with some fun music for you, some fun facts as well, I'm sure.
0: Yeah, yes,
1: cool.
0: So, phir milenge dosto,
1: yes, and you take care, and we will see you all tomorrow. Namaste,
0: namaste,
1: take care, enjoy the day.
0: Okay,
1: ta ta,
0: bye
1: bye.

नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत बहुत बहुत बहुत अच्छे हैं। और अगर नहीं अच्छे, अगर थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं क्योंकि सुबह का वक्त है, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए। एनर्जी से भरा हुआ, गाता गुनगुनाता हुआ इट हैपेंस लेकर सताक्षी आपके लिए हाजिर हो गई है। बहुत सारी बातें हैं जो आपके साथ करूंगी और बहुत सारे मॉर्निंग ट्रैक्स हैं जो आपको सुनवाऊंगी, लेकिन ये सब सुनने के लिए आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा ना। हाँ, तो भाई जिन्होंने अभी तक रेडियो सेट्स नहीं खोले और वो दूसरों के घरों से मुझे सुन रहे हैं, तो प्लीज अपने रेडियो सेट्स भी ऑन कर लीजिए, अपने मोबाइल फोन्स, अपने कंप्यूटर्स, जहां पर भी आप मुझे सुनते हैं प्लीज ऑन कर लीजिए, ताकि आप इट हैपेंस को अपने अपने घरों में अपने साथ एंजॉय कर पाए, है ना। और बहुत खूबसूरत गाने जो है वो आप यहाँ पर सुनने वाले हैं, लेकिन अगर वो दूसरों की विंडोज से आएंगे, आपके कानों में दूर से पड़ेंगे, तो मजा नहीं आएगा ना। इसलिए जल्दी से खुद के घर में भी शुरू कीजिए इट हैपेंस, और आज के गानों को गुनगुनाना भी तो है, तो जल्दी आप अपने कामों को फिनिश करते चलिए, ताकि दिन जो है वो अच्छा बीते, खूबसूरत बीते, मिसमैनेजमेंट ना फैलने पाए, है ना। क्योंकि एक बार रूटीन अगर बिगड़ा तो फिर पूरे दिन का रूटीन चेंज हो जाता है, तो ऐसा ना हो इस बात का ध्यान रखिए। आप काम करते रहिए, मैं आपको इंगेज रखूंगी अच्छे अच्छे गानों के साथ भी, आपको एंटरटेन करती रहूंगी, और बातें तो होती है लाजवाब हमारी। तो चलिए, देर किस बात की है, इस अगले ट्रैक के साथ बढ़ते हैं हमारे सफर में आगे। कीप लिसनिंग टू रेडियो प्रस्वानी 1701 AM, आप है सताक्षी के साथ और एंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ इट हैपेंस।

0: नशे से चढ़ गए।
1: गुड मॉर्निंग अजी, एक बार फिर से आपको रेडियो प्रसारणी पर सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। वेल, बातें होंगी, बहुत सारी बातें होंगी, गाने भी होंगे, बहुत सारे गाने होंगे, लेकिन हाँ हाँ, आज का दिन जिनके लिए खास है उन्हें हम कैसे भूल जाए। तो आपका है हैप्पी बर्थडे, तो जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक। हैप्पी बर्थडे टू यू, एंड वी विश कि आप जिंदगी की हर खुशी पाएं, हर पल गाते मुस्कुराते गुनगुनाते हुए बिताएं। जिनकी आज है शादी की सालगिरह, उनके लिए तो दिन और भी खास है। आपको पता है, मेरे हिसाब से जब आपकी शादी होती है ना, तो आपका नया जन्म होता है। सब कुछ जिंदगी में नया होता है। आप जिंदगी की एक नई समझ रखना शुरू करते हैं, एक नई जिंदगी को एक्सपीरियंस करते हैं, जो उस दिन के पहले आपने शायद पहले कभी नहीं किया होता है, राइट? सो मेरे लिए बहुत ऐसा वाला होता है कि यार, ये नया जन्म है इंसान का। तो आपका भी आज नया जन्म हुआ था, तो हैप्पी बर्थडे भी हुआ आपका। वेल, आप दोनों को शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। ये साथ यूं ही बनाए रखिएगा और इस जिंदगी में एक दूसरे का हाथ थामे यूं ही साथ साथ चलते रहिएगा। और जिनके लिए भी स्पेशल है, खास है आज का दिन, उन सबको ऑल द वेरी बेस्ट। और बहुत सारी विशेज हैं हमारी कि आप सबका दिन, आप सबका सबका सबका दिन आज बहुत खूबसूरत जाए। चलिए इसी विश के साथ शुरुआत करते हैं इट हैपेंस के इस अगले गीत की। हाँ, इसे एंजॉय कीजिए और लौट कर आइए, फिर बहुत सारी बातें हैं जो आपके साथ करूंगी। कीप लिसनिंग टू रेडियो प्रस्वानी 1701 AM, क्योंकि आप है सताक्षी के साथ आपके अपने ब्रेकफास्ट शो में।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अगे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन, जो के अगे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां, इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

बैक इट हैपन सुन रहे हैं आप रेडियो ब्रिस्वानी पर और आपके साथ सताक्षी है। यू नो, जब हमारी अलमारी ठसाठस कपड़ों से भरी होती है ना, तो हम नए कपड़े नहीं रख पाते। ठीक वैसे ही जब हमारा दिमाग पुरानी यादों और बेकार की चिंताओं के साथ ही दूसरों की कही कड़वी बातों से भरा रहता है ना दोस्तों, तो भी हम उसमें नए थॉट्स को नहीं ला पाते। तो अपने माइंड को थोड़ा फ्रेश करिए ना, जो बातें बीते कल की हैं उन्हें दिमाग से बाहर निकालिए। जब आपका मन खाली होगा और साफ होगा, तभी उसमें नई खुशियों और थॉट्स के लिए जगह बनेगी। कम सामान, कम स्ट्रेस और ज्यादा शांति, यही तो है सादगी का फलसफा। और इसी फलसफे के नाम ये अगला ट्रैक सुनिए इट हैपेंस में, और मेरे साथ सुनते रहिए आपका ब्रेकफास्ट शो रेडियो ब्रिस्वानी पर।

रेडियो प्रस्वानी पर आप सुन रहे हैं इट हैपेंस। आपके साथ इस सफर में सताक्षी है। मान लीजिए कि आपको एक 20 किलो का पत्थरों से भरा बैग लेकर पहाड़ पर चढ़ना है, आप कैसा महसूस करेंगे? थकाऊ है ना। किसी के लिए नफरत या बदला लेने की जो आपकी फीलिंग है ना, वो उस भारी बैग को अपनी पीठ पर लादकर चलने जैसी ही है। जब आप किसी को माफ कर देते हैं तो आप उस इंसान का भला नहीं करते, बल्कि आप उस भारी बैग को जमीन पर फेंक कर खुद को आजाद कर लेते हैं। माफी मांगना बहुत हिम्मत का काम है दोस्तों, लेकिन माफ कर देना उससे भी बड़ी हिम्मत और सुकून का काम है। तो अभी इसी वक्त उस भारी बैग को उतार फेंकिए और खुद को आजाद कीजिए उस बोझ से, और सुनते रहिए इट हैपेंस आपके अपने रेडियो प्रस्वानी पर सताक्षी के साथ।

बैक टू बैक ट्रैक्स का हमारा सफर गानों की हैट्रिक इस वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ। गानों की हैट्रिक का ये लास्ट ट्रैक और इसके बाद होंगी ढेर सारी बातें आपके अपने ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं अभी गानों की हैट्रिक का ये तीसरा ट्रैक।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमान।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: हर साल जंगलों में अग लगती है, यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ, ताजे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार।

भाई दिन की शुरुआत कर रहे हैं आप, लेकिन फलसफा वही पुराना होगा। जब नौकरी मिल जाएगी तब खुश होऊंगा, जब घर बनेगा तब जी लूंगा, जब गोल पूरा हो जाएगा तब जश्न बनाऊंगा। पर याद रखिए, मंजिल तो सिर्फ एक पॉइंट है, असली जिंदगी तो वो पूरा रास्ता है जो आप तय कर रहे हैं। अगर रास्ते में मिलने वाले नज़ारों का, दोस्तों की बातों का, चाय के ढाबों का मजा नहीं लिया तो मंजिल पर पहुँच कर खालीपन ही लगेगा ना। इसलिए जर्नी का आनंद लीजिए, जर्नी का मजा लीजिए, मंजिल तो मिल ही जाएगी। और सुनते रहिए ठप्पन्स सताक्षी के साथ।

बैक. गुड मॉर्निंग रेडियो प्रस्थानी पर सताक्षी के साथ आपके मॉर्निंग शो को आप एंजॉय कर रहे हैं. आप एंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ इट हैपेंस. दोस्तों, रातें चाहे कितनी ही काली और कितनी ही लंबी क्यों ना हो, सूरज को उगने से रोक नहीं सकती हैं. आज हो सकता है कि आपकी जिंदगी में अंधेरा है या फेलियर्स हैं, तो निराश मत होइए. अपने भीतर उम्मीद का वो छोटा सा दिया जलाकर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी उम्मीद ही आपकी ढाल है. सिचुएशंस बदले ना बदले, जब आपकी सोच बदलती है तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है.